0: Agretti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी

0: बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agraye in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
2: Defense Minister Rajnath Singh also said that the tri-commissioning of the 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. This theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "Yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit." President Draupadi Murmu also performed yoga at Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. A large number of public representatives, officials and citizens were present at the event. Addressing the event, the President said, "Yoga is a celebration of India's great tradition." She said, "Yoga has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life." The National Testing Agency, NTA, has issued guidelines for the students appearing for the NEET UG re-examination today. Over 22.79 lakh candidates will sit for the exam in 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA said that entry to the examination centers will close at 1:30 in the afternoon. It has asked the students to carry their admit cards and valid photo ID. The admit cards for the exam can be downloaded from the website neet.nta.nic.in.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12:10 हुए हैं। अब सुनिए ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृह से संबंधित सभी ताने बानों के साथ ग्रामीण महिलाओं और हमारी प्यारी सखियों से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में मैं हूँ रेनू तवर और मेरे साथ कमलेश मुद्गल
1: और हाँ। स्वीकार कीजिए हम दोनों का
0: प्यार भरा राम राम, राम। तो भाई आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, आज बहुत खास दिन है, आज है 21 जून। और 21 जून खास क्या है या आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों, पहले तो ये बताइए। कमलेश
1: देखिए चमक तो हमेशा रहती है पर आज आपने महसूस की है क्योंकि आज का दिन है बड़ा खास, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही सभी लोग लग गए हैं योगा करने के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो आज आपने अपनी आदत बनाई है उसको पूरी उम्र अपनी आदत में शामिल रखिएगा जिससे कि आप स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल, और स्वस्थ रहने का कई तरीके थे, लेकिन कहते हैं ना योग एक ऐसी चीज है जो आपको मन और तन से स्वस्थ रखती है, और जब मन स्वस्थ रहता है तो सब कुछ ही स्वस्थ रहता है, दिल दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है, और काम जब करता है तो हर काम अच्छा लगता है और जीवन उतना ही खुशहाल लगता है। क्यों कमलेश?
1: और मैं तो यही कहती हूँ कि जब हम योग की बात करते हैं तो कहते हैं योग मतलब जमा। जमा क्या? जमा ये है कि हमें अपने अंदर अच्छी आदतें भी तो लानी है ना। केवल हमने मान लीजिए आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली, आधा घंटा हमने बोल दिया कि प्राणायाम कर लिया, व्यायाम कर लिया, और उसके बाद जब हम परिवार के सदस्यों से मिलते हैं तो हर परिवार का सदस्य हमसे दूरी ही बना के रखता है, और एक इनसे बात करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे इनसे इस बात में राय लेंगे तो ये हमें ढंग से राय नहीं देंगे। तो हमें कैसा बनाना है अपना जीवन? हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है कि कोई भी हमसे बात करने के लिए उतावला रहे, कि हाँ इनसे अगर हम अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। और जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है तो हर कोई खींचा चला जाता है।
0: बिल्कुल, और इसी पर ना हम आज कहते हैं ना 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, और इस भव्य आयोजन का जो मुख्य समारोह था पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित ऐतिहासिक रोड पर आयोजित किया गया। तो इस पर जहां बहुत कुछ हुआ तो चले सुनते हैं इस पर एक बाइट।
1: बिल्कुल, और जो बाइट है वो किसकी है तो वो हम बताते हैं कि 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाइट हम आप बहनों को सुनवा रहे हैं।
0: एमएल जाट डीजी एवं सेक्रेटरी डेयर आईसीएआर पूसा नई दिल्ली से।
2: विश्व योगा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज

0: विश्व योगा दिन का जो सेलिब्रेशन किया गया, पूरे देश में सभी लोगों ने योग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को इस दिन पे संबोधन किया और यहाँ पे आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस प्रांगण में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट इकट्ठे होके आज यहाँ पे योगा किया। हम लोग तो खेती के बारे में काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, और मुझे लगता है कि योगा की बात करते हैं और खेती किसानी भी एक बहुत बड़ा योगा है। आज का योगा सिर्फ एक दिन का योगा नहीं, इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया योगा 365, तो योगा हर दिन करना है। और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, कृषि में तो रोज योग वैसे भी करना है। आज के इस योग दिवस पे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: और जब हम बात करते हैं योग की, तो हमारी बहनें भी सुन रही हैं ये कार्यक्रम, और उन्हीं का अपना कार्यक्रम है, वो क्यों नहीं सुनेंगी। और जब हम बात करते हैं, हमारी बहनें पता है क्या कहती हैं, कहती भी सारा दिन तो हमारा योग होता है, इधर जाओ उधर भागो, इधर रसोई का काम करो, उधर खेत खलियाने का काम करो, फिर बच्चों को संभालो, उसके बाद में ढोर डांगरा का करो, हमारा तो जी योग हो गया। लेकिन
2: ऐसा नहीं है कमलेश जी, बिल्कुल ऐसा नहीं
1: है,
2: क्योंकि काम तो अलग चीज है और योग अलग चीज है। योग करने से कहता, और आप पता है इस बार जो बारवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इस पर कुछ थीम भी थी।
1: अच्छा, वैसे तो रेनू पता है जो हमारे बुजुर्ग बहने ना, वो कहती है अरे तुम क्या रेडियो पे बैठ के योग योग कर रही है, बढ़ती उम्र में कौन योग करेगा, हम तो अपने पोता पोती और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें बालकों को पालने वही ठीक है।
2: ना बाबा ना। अच्छा? इसीलिए तो इस बार यही थीम रखी गई कि जो बढ़ती उम्र के प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है, बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक रूप को स्वस्थ और सक्रिय बनाने के लिए इसका थीम रखी गई, स्वस्थ आयु के लिए योग।
1: बिल्कुल, आयु आपकी जो भी हो, अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो आप उस पूरी आयु को भली प्रकार से जी पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारे जो बहनें हैं वो जब योग करती हैं तो एक मानसिक रूप से भी वो सबल रहती हैं, क्योंकि केवल योग का मतलब ये होता है कि हम अपने लिए कुछ समय निकाल कर बैठे हैं, नहीं तो ये होता है हमने पूरे परिवार के लिए ये काम करना है वो काम करना, और हम अपना जो काम है वो भूल जाते हैं। अपना क्या काम है, अपने आप को स्वस्थ रखना। कभी सोचा है जब हम बीमार होते हैं तो हम कितने एकदम डल महसूस करते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद एक छोटी सी बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, काजल डाले, तो अपने आप को ना एनर्जेटिक महसूस होता है। कभी महसूस किया करके देखना, क्योंकि मैंने किसी के कहने पर करके देखा है।
2: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि योग कितनी भागदौड़ वाली जिंदगी हमने बना ली, हर वक्त हम भागते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। और संतुष्ट करने के लिए ना, मन को कहते हैं ना कि उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है योग करना, और हम महिलाओं के लिए तो बेहद जरूरी, क्योंकि वो घर बाहर बच्चे हर किसी को संभालती है, तो उसे सबसे ज्यादा अपने मन को संभालना भी जरूरी है।
1: और अगर आपका मन संभला रहेगा तो आपके घर का कोना कोना भी महकता रहेगा।
2: और कुछ नहीं है कमलेश, बैठ के ना अलोम विलोम कर लो, आप किचन में भी करो, थोड़ा बहुत सांसों को कहते ना थोड़ा लंबा लें और छोड़ें, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
1: और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ, एक गिलास पानी अपने सामने रखो और उस पानी को भी केवल घूंट घूंट करके पियो। सोचो कि पानी गर्म है, क्योंकि ठंडा पानी तो हम एक बार में एक घूंट में पी जाते हैं।
2: और एक बात तो और कमलेश, एक बात की अगर हमारी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं तो इस वक्त भी आप आराम से अलोम विलोम कर सकती हैं, तो हमारा प्रोग्राम भी सुने और अलोम विलोम भी करें।
1: बिल्कुल, अगर नहीं आता हो तो हम आपको बता दें कि सांसों का आना और जाना, धीमी सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब आराम से अपने सांसों पर ध्यान रखना है, मतलब अपने आप से मिलिए,
2: आप से सुंदर कोई भी नहीं है,
1: हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं।

0: आज की दौड़ती भागती जिंदगी की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि जब हम अपने रुपए पैसे का हिसाब रखते हैं या रुपए पैसे की बात करते हैं, कहते हैं हम तो बड़े सुखी हैं। भैया रुपए पैसे तो हर कोई सुखी होगा, और जब हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम बड़ा उसे सोच समझ कर खर्च भी करेंगे। लेकिन एक बात तो है, जैसे पहले हमारी दादी नानी करती थी कि भैया थोड़े पैसे यहाँ संभाल के रख दिया, थोड़ा यहाँ संभाल के रख दिया, और फिर एक बटुआ ले जाते थे, फिर उसमें भी बैग में देखती थी कि यहाँ पर इतने पैसे रखे हैं, और दिमाग में रखना भी पड़ता था भैया 100 रुपए के नोट कहाँ है 50 के का।
1: वो कहते हैं ना हमारी माएं जो है बटुआ लेके घूमा करती थी, लेकिन अब हम सब क्या लेकर घूमते हैं?
0: अरे मोबाइल लेकर घूमते हैं, मोबाइल बटुआ हो गया आजकल।
1: बिल्कुल, आधा बैंक तो हमारा मोबाइल हो चुका है कि मोबाइल के जरिए हम अपने पैसे का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ना बचत करना किस तरीके से, हम हमारे फोन के माध्यम से भी हम बचत बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे डिजिटल भुगतान की अगर बात कही जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हमें खतरा नहीं होता कि भाई ये पैसा मेरा इधर उधर ना चला गया और बटुआ खो तो नहीं जाएगा। तो ये है कि लेकिन फोन ना खो जाए इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और कितने सारे ऐप हैं इनके माध्यम से हम जो भी भुगतान कर रहे होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन रेनू एक बात तो है, अब मैं भी ना कई बार डरती हूँ और भुगतान नहीं कर पाती हूँ, और कुछ मेरी तरह से और भी बहने हैं उनको भी डर लगता है कि भाई हम पैसा जो है कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि एक दो के साथ अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर उनको लगता है हमारा पैसा तो गया, और जिसके पास पैसा जाता है वो फिर वापस तो देगा नहीं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना आर्थिक साक्षरता का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या वो सही जगह आप भेज पा रही हैं नहीं भेज पा रही हैं। तो इसके लेन देन के लिए एक सीमित होती है, UPI मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आप भुगतान तो करती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सही जगह कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है OTP आता है और हम बहुत जल्दी जल्दी में ना दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना OTP, बैंक पासवर्ड और UPI पिन किसी के साथ साझा ना करें।
0: बिल्कुल, ये बार बार हम लोग भी कहते हैं और जितने भी मीडिया वाले लोग हैं सब बताते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। और सबसे बड़ी बात तो हमारी जो महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हो गई हैं, और सबसे एक और अच्छी बात की जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, उन बहनों को भी मैंने देखा कि फटाफट जो है उनके पैसे हैं उनके उसमें आ जाते हैं, और फिर उनको पता चल जाता है कि भाई हमारी जो है कितनी सेल हुई है, हमारे पास कितना पैसा आ चुका है, और जो सामान हमने खरीदना है वो कौन सी दुकान से खरीदना, और वहां पर भी हमने कैसे उनको UPI के माध्यम से या पे के माध्यम से गूगल के माध्यम से हमने उनको पैसा कैसे ट्रांसफर करना। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ बैठे हैं, गांव में अगर किसी को जरूरत पड़ गई है तो शहर से जो है

0: साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा
0: बाप।

0: बापू
1: अच्छी है बरखुरदार।
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान पिछोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
1: हाय ठीक है ठीक है, प्यार की होए यार प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।
3: बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया।

0: चाहता हूँ। आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
0: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले।

0: दूंगो, लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही को छोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात।

0: बोल दो बापू।
1: हाँ बोल दे बेटा।
2: बाप

0: और रेनु, जो 21 जून का दिन है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है और यही दिन होता है जो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को हम जोड़ सकते हैं, प्रकृति के साथ हम जोड़ सकते हैं, अपनों के साथ, क्योंकि जब अपने अपनों के साथ जुड़ते हैं तो उससे तो बात ही कुछ अलग हो जाती है।
1: बिल्कुल, और योग कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम है बल्कि मन को शांत और सकारात्मक बनाने का काम भी करता है। और वाकई गर्व की बात है कि भारत ये अनमोल विरासत आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन संदेश दे रहा है और इसी पर हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योग गुलशन कुमार योगाचार्य से बातचीत कर रही हैं नवोदिता मिश्रा, तो चलिए सुनते हैं।
2: नमस्कार, आज विश्व योग दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं योग हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और योग से जो फायदे हैं वो हर आयु वर्ग के लिए हैं, हर लिंग के लिए हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए ये आवश्यक है कि वो योग से जुड़े, योग से जो फायदे हैं उसको अपना सके। महिलाओं की अगर खास तौर पर बात करें तो ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए किस तरह के योग, जो योग साइंस है, जो एक पूरा विज्ञान है योग का, वो प्रिस्क्राइब करता है। इस विषय पर और ज्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन जी, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका गुलशन जी।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहला सवाल तो यही है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में जब हम योग के योगदान की बात करते हैं तो ऐसा क्या है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए क्या योग ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन है?
3: योग सभी वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, युवा हो, बालक हो या बालिका हो, हर आयु वर्ग के लिए योग करना बहुत जरूरी है। योग वास्तव में एक ऊर्जा है, योग एक शक्ति है और महिलाओं के लिए योग उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के उत्तरदायित्व और काम काज करने के तरीके पुरुषों की अपेक्षा थोड़े अधिक होते हैं और खासतौर पर एक वर्किंग महिला एक गृहिणी भी है और एक माँ भी है, तो एक पत्नी भी है, तो एक बहन भी है, तो इन सब के ध्यान में रखते हुए योग महिलाओं के लिए पुरुषों से ज्यादा अच्छा माना गया है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को उत्तम श्रेणी की तरफ ले जाने के लिए योग की तरफ ध्यान दें।
2: हाँ, मेरा पूछने का मकसद भी कहीं ना कहीं यही था कि जब हम ऐसी महिलाओं की बात करते हैं जो कई फ्रंट्स पर, कई मोर्चे पर वो अपना समय दे रही हैं, ऑफिस हो, घर हो, परिवार की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और वैसे भी कहा गया है जो योग चित्त वृत्ति निरोध जिसे कहा गया है, योग उसमें बहुत मदद करता है, तो जो चित्त की चंचलता है वो शायद हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है। उस हिसाब से भी हमें लगता है कि योग जहां पर आप हैं वहां रहते हुए भी आप, तो महिलाओं के विषय में ये ज्यादा अनुकूल होता है।
3: बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की जो प्रथम शिक्षिका मानी गई हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करती हैं और अपने परिवार की अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं, तो जहां महिलाओं की बात आती है तो उनकी जो शक्ति है डे बाय डे खर्च होती चली जाती है, तो शक्ति अर्जित करने का योग एक अच्छा माध्यम है। शरीर में हार्डनेस आ रही है महिलाओं के और शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए योग की अहम भूमिका है। महिलाओं के शरीर में कई बार कुछ बदलाव आते हैं, कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है, तो इन सब पीड़ाओं से

0: करने का जो माध्यम है वो योग है।
1: अगर योगासन की बात करें खास तौर पर, तो जो अलग अलग आयु वर्ग है, जैसे एक कोई किशोर युवती है, कोई मध्य वय की कोई महिला है, और फिर जो रजोनिवृत्ति के बाद जो महिलाएं, तो अगर हम अलग अलग वय की बात करें, खास तौर पर अगर रजोनिवृत्ति के बाद की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि उस समय किस तरह की योगिक क्रियाएं, किस तरह के योगासन उन्हें खास तौर पर मदद कर सकते हैं?
0: मीनोपॉज की बात आप कह रहे हैं, तो मीनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में काफी चेंजेस आते हैं, और महिलाएं ज्यादातर देखी गई हैं कि वो एक तनाव की स्थिति में उन्हें गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि मासिक धर्म एक उम्र के बाद बंद होता ही है, जिसको हम रजोनिवृत्ति कह रहे हैं। उस दशा में देखा गया है कि महिलाओं के अंदर एक जब रजोनिवृत्ति आती है, तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन

0: चीजें ज्यादातर देखी गई हैं कि वो एक तनाव की स्थिति में उन्हें गुजरना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि मासिक धर्म एक उम्र के बाद बंद होता ही है, जिसको हम रजोनिवृत्ति कह रहे हैं। उस दशा में देखा गया है कि महिलाओं के अंदर एक जब रजोनिवृत्ति आती है तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण कैल्शियम घुलनशील होकर के हड्डियों से बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण बोन की डेंसिटी कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं, और जिसके कारण घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द रहना, थकान रहना, ये लोगों के अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और लेकिन जैसे जैसे रजोनिवृत्ति आने लगे या आ चुकी है तो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, डिप्रेशन होने लगता है, रात को नींद नहीं आती और महिलाओं में हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, गर्म और ठंडे पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, गर्मी लगती है, घुटन होने लगती है, तो ऐसे में योग में कुछ जो आसन से वो यदि महिलाएं अपनाती हैं अपने जीवन में, प्रमुख रूप से भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है, धनुरासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, ये आसन नियमित रूप से अगर करती हैं तो उनकी बोन जो डेंसिटी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और उनके शरीर में जो घुटनों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बांह में दर्द है, वो धीरे धीरे उन दर्दों में आराम आना लगता है। और प्राय देखा गया है कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं की नींद खराब होने लगती है, क्योंकि अचानक आंख खुल जाती है, हॉट फ्लैशेस आते, गर्मी बहुत लगती है, तो उसमें ये देखा गया है कि अगर महिलाएं शीतली प्राणायाम करें, चंद्रभेदन प्राणायाम करें, तो शरीर में जो बेचैनी होती है हॉट फ्लैशेस की वजह से उसमें काफी आराम आता है और रात की जो नींद की क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाती है।
1: ये तो बात हुई रजोनिवृत्ति के बाद जो महिलाओं में समस्याएं आती हैं। अगर इसके पहले के चरण में चलें तो जो मध्य वय की महिलाएं हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं 25 से लेकर 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, उनके भी जीवन में आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से और फिर पारिवारिक दायित्वों के हिसाब से मां बनने के क्रम में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो आपके हिसाब से इस तरह की महिलाएं जो इस वय में आती हैं और जो इस तरह की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनको अपनी दैनिक गतिविधियों में वो किस तरह के योगासन को शामिल कर सकती हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें बहुत ज्यादा, अगर कोई परिवर्तन होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो?
0: संतुलन योग की तरफ ऐसी जो 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं हैं, उनको संतुलन जीवन शैली अपनाने के साथ संतुलन योग की कुछ क्रियाओं का चुनाव अपने लिए कर लेना चाहिए। और यदि वो नियमित रूप से ताड़ासन करती हैं, कटी चक्र आसन करती हैं, कोण आसन करती हैं और कुछ मुद्राएं भी की जा सकती हैं, योग मुद्रा कर सकती हैं, बटरफ्लाई कर सकती हैं और इसी तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम, इतना बस प्रतिदिन कर लें इस वर्ग की महिलाएं, तो वो एक संतुलित जीवन यापन कर सकती हैं। जो उनके सामने कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, अगर इस वर्ग की महिलाएं जो मैंने विधियां और नाम गिनाए हैं वो अगर महिलाएं करती हैं तो काफी सुधार उनको अपने जीवन में मिलता है। साथ साथ योग करने से महिलाओं के अंदर जो एक चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन होती है, तो इरिटेशन से वो बाहर निकल आएंगी और एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, तो सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो जो भी वो कार्य करेंगी वो भी सकारात्मक होगा।
1: अब थोड़ी सी बात हम कुछ अपनी बढ़ती बच्चियों के बारे में भी करते हैं, जो बच्चियां अभी किशोरावस्था में हैं, उनको किस तरह के आसन करने चाहिए जो ताकि उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी उनका जो विकास है वो ढंग से हो और वो भी अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रख सके।
0: ग्रोइंग एज जो किशोरावस्था की बच्चियां हैं, सभी बच्चियां एक अच्छी हाइट बनाना चाहती हैं। जिनके माता पिता थोड़े से शॉर्ट हाइट के हैं तो वो भी बच्चियां चाहती हैं कि उनके माता पिता से उनकी हाइट ज्यादा अच्छी हो, तो ऐसी बच्चियों को ताड़ासन का 8 से 10 बार प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। ताड़ासन करने की विधि इस प्रकार से है, दोनों पांव को मिला करके श्वास भर के दोनों भुजाएं आगे से ऊपर उठा करके, एड़ियां उठा करके एक गहरी सांस

0: लेते हुए और छोड़ते हुए रुकना चाहिए, ये ताड़ासन है। और इस ताड़ासन में जो समय अवधि है अपनी शारीरिक क्षमता और शक्ति के अनुसार ही करें, और जब आप थकान महसूस करें तो पैर नीचे करके हाथ नीचे ला सकते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए जंपिंग कर सकते हैं, इसको योग की भाषा में उत्कूर्दन कहते हैं। एक ही स्थान पे खड़े खड़े कूदने की स्थिति को उत्कूर्दन कहते हैं। तो मैक्सिमम बच्चियां पहले समय में लोग रोप स्कीपिंग करती थी, तो वो अब प्रचलन में थोड़ा कम हो गया है, तो वो भी कर सकती है या जंपिंग कर सकती है। और इस एज में प्राय बच्चियों को देखा गया कि मासिक धर्म का जो प्रारंभ है उनका 12-13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो कई बार बच्चियों को देखा गया है कि पेट में प्रारंभिक अवस्था में दर्द उठता है और इस तरह की कई तरह की परेशानियां होती हैं, क्योंकि एक प्रकृति का एक मासिक चक्र जो है वो आरंभिक अवस्था में है, तो शरीर में कुछ पेन होते हैं। तो वो बच्चियां यदि थोड़ा सा प्राणायाम ठीक करना शुरू कर दें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकती हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकती हैं, इतना भी अगर कर लेती हैं उसके बाद थोड़ा रिलैक्सेशन पद्धति सीख लेती हैं, तो बच्चियों में जो मासिक धर्म के दिनों में पीड़ा होती है उनमें काफी आराम मिल जाता है।
1: और अब एक छोटा सा सवाल, योग जो है वो कई मायनों में हमारे ना सिर्फ योगासन बल्कि हमारे आहार विहार इन सारी चीजों को मिलाकर एक संपूर्ण प्रक्रिया कहलाता है। तो अभी तक हमने कुछ आसनों की बात की, अगर आहार पर आए तो अगर योगासन हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए?
0: भगवान कृष्ण गीता में आहार के बारे में बता रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्ना बोधस्य योगा भवति दुखा। योग केवल उसी व्यक्ति के दुखों को दूर करता है जिसका आहार युक्तिपूर्ण आहार कोई करता है। और आहार के लिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था एक बार कि योग किसको सिद्ध होगा, तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट योग के बारे में, अधिक न खाई अधिक न सोई अर्जुन योग सिद्ध सो होई, ना तो अधिक खाने वाले को ना अधिक सोने वाले को योग सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने संयम की बात कही है। तो शरीर को उन्होंने फिर चार भागों में, हठ योग प्रदीपिका के अंदर मिताहार की बात आती है कि दो भाग भोजन के शरीर में डालने चाहिए, एक भाग जल और एक भाग खाली छोड़ना चाहिए सांस को आने जाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपने गंठ तक ठूस ठूस के खाना भर लेगा फिर उसको या तो वोमिटिंग हो जाएगी या कोई और परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से आहार के बारे में बताया गया है, और ये एक भाग जल और एक भाग खाली छोड़ना चाहिए सांस को आने जाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपने गंठ तक ठूस ठूस के खाना भर लेगा फिर उसको या तो वोमिटिंग हो जाएगी या कोई और परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से आहार के बारे में बताया गया है।
1: और मेरा अंतिम प्रश्न योग दिवस की इस वर्ष की थीम से है, जो एजिंग से रिलेटेड

0: देखभाल कैसे की जाए, तो इसी थीम को शायद इसी बात के लिए देश के सामने रखा है कि योग में आप वृद्धावस्था में ढलान की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस ढलती हुई शरीर की अवस्था को योग की ऊर्जा से भर करके एक नई शक्ति का विकास फिर से आप कर सकते हैं।
1: योगी वर्षन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विषय पर आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योगाचार्य गुलशन कुमार से निवेदिता मिश्रा की ये बातचीत।

0: कमलेश जी, कल जो था बहुत ही खास दिन रहा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 23वीं किस्त हाल में ही 20 जून 2026 को जारी कर दिया गया। और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से डीबीटी के माध्यम से 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2000 की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी थी।
1: और जब हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, तो ये भी बता दें कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आप अपनी स्थिति का जो एक तरीका है वो भी बता सकते हैं, कैसे जांच कर सकते हैं कि आप इसकी वेबसाइट पर जाएं, पीएम किसान सम्मान निधि और बेनिफिशियरी स्टेटस पर जो विकल्प आए उसके ऊपर क्लिक करें, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या आधार नंबर है उसको दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें और गेट डाटा पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करें।
0: लेकिन ध्यान रहे कि सरकार द्वारा जितने भी नियमों के अनुसार खाते में पैसे के लिए ईकेवाईसी बहुत जरूरी है।
1: और 23वीं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त 20 जून को जारी की गई है, उस समय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर क्या कहा, हम भी सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
2: बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं

0: उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलकर हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। साथियों, देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: तो अभी हम सुन रहे थे 23वें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

0: कमलेश जी, अगर हम बात करें हमारे आयुष मिशन यानी कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की, तो भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य होता है कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ करना और जन जन तक पहुंचाना।
1: बिल्कुल, और इस मिशन के माध्यम से आयुष अस्पतालों और जो औषधालय है उनका विकास किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है और लोगों को आयुष पद्धतियों के बारे में जानकारी दी जाती है।
0: बिल्कुल, और गुणवत्ता ही बढ़ाई जाएगी और औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को प्रोत्साहित करना भी इसका मिशन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि किसानों को आय के नए अवसर भी मिलते हैं।
1: बिल्कुल, और उनका जो कच्चा माल है वो भी समय पर उपलब्ध हो जाता है। और इसी के साथ हम बात कर लें भारत की वीरांगना क्रम में, तो आज हम बात करेंगे उषा मेहता के बारे में, जो गांधीवादी और स्वतंत्र कार्यकर्ता थी, राष्ट्रवादी गीत और जो अधिकारियों के जो एक भाषण थे वो एक खुफिया रेडियो स्टेशन के माध्यम से प्रसारित किए जाते थे, क्योंकि जो बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं जब तक हम अपने श्रोताओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे पता चलेंगे। तो उस समय पर ये काम जो थी वो उषा मेहता ने किया था और 3 महीने के बाद उनको फिर जेल की यात्रा करनी पड़ गई थी और उन्होंने आजीवन खादी पहनी थी और सामाजिक कार्यों से वो जुड़ी रही
0: और 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की कार्यकर्ता रही और इसी के बाद हम इनको शत शत नमन करते हैं और सुनते हैं ये वाला नगमा।
1: और इसके साथ ही हम ये बता दें कि जो हमारा कार्यक्रम हमारी बहनें सुनती हैं और समय समय पर जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको ये भी बता दें कि आज विश्व संगीत दिवस भी है, क्योंकि इतने सारे दिवस हैं तो मुझे लगा कि पहले उनको जो है ये बताना चाहिए।
0: बिल्कुल, और संगीत से मन और तन दोनों खुश रहता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप सुनते हैं हमारे संगीतों को और संगीत के साथ साथ जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो आप तो पता ही है कि हमारा यही उद्देश्य होता है कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और घर बैठे ही इसका ज्ञान भी लें, साथ साथ संगीत का एक कहते हैं ना मन खुश करने वाले हम गीतों का बहार भी लेकर आते हैं, चाहे वो फिर वो लोक गीत हो, रागिनी हो या फिर हमारे बॉलीवुड से संबंधित गीत हो।
1: बिल्कुल, और जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज फादर्स डे भी है और जून के तीसरे रविवार को अपने पिता के प्रति मान सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इस दिन को जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज का जो दिन है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी है, इसमें समुद्र के नक्शे और हाइड्रोग्राफी के महत्व को बताता है और ये भी बताता है कि वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जितना हमें ज्ञान हम कहीं से भी लेकर बटोर कर आते हैं या अपना ये देखते हैं कि अपनी बहनों को क्या क्या बताया जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है
0: और समय हमें, कम, हमें लगता है कि समय कम है।
1: इसके साथ साथ हमें भी जानकारी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम आप बहनों के समक्ष आते हैं तो देखो ऐसे ही नहीं आ जाते, पूरी जो है वो टीम वर्क होता है।
0: हाँ।
1: और उस टीम वर्क की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं तुषार पाराशर और जो
0: संयोजक हैं वो हैं शिव नंदन लाल।
1: और हमारा जो पता है वो है
0: जी, हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001 और ईमेल आईडी feedback@fnh.gmail.com।
1: और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने विचार जरूर बताएं, क्योंकि आपका अपना ये कार्यक्रम है, उसी पर 4 चांद लगेंगे यदि
0: आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं
1: हमें बताएंगे। और
0: इसी के साथ हमारा आज का गृह लक्ष्मी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से सुनने वाले सभी बहनों को हमारा राम राम, राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने को है अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दिन के 1:10 हुए और हुए हैं 18 सेकंड। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोता, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी फिल्म है 1985 में रिलीज हुई एक बेहद सफल और ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म है। विजय सदाना द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। तो श्रोताओं, फटाफट से हमें मेल करिए और पहचानिए कि कौन सी फिल्म है ये। तब तक सुनते हैं उसी फिल्म का ये बेहद लोकप्रिय गीत।

अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो प्रीति यानी पद्मिनी कोल्हापुरी एक समृद्ध लड़की है जो एक माध्यम वर्ग से फोटोग्राफर अजय यानी मिथुन चक्रवर्ती से प्यार कर बैठती है। उसके माता पिता शुरुआत में विवाह के लिए असहमत थे, लेकिन बेटी उन्हें शादी के लिए तैयार करने का प्रबंधन करती है। प्रीति के पिता भान यानी डैनी अजय को एक शीर्ष श्रेणी के फोटोग्राफर बनाते हैं और उनका वेतन बढ़ाते हैं। बाद में अजय ने जब पता लगाया कि भानु ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया तो वो प्रीति और अजय अलग हो जाते हैं। प्रीति और अजय दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। भानु उन्हें अपने कारण की गई गलतफहमी से तलाक दिलाता है। भानु ने अजय को विश्वास दिलाया कि प्रीति तलाक चाहती है और इसके विपरीत भी किया। जब प्रीति को अजय के बच्चे के साथ पाया गया है, भानु अजय को ये नहीं बताता है और इसके बजाय उससे शिमला में प्रीति को ले जाता है ताकि कोई भी ना जान पाए कि उसने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल वो पूरी कोशिश में थी कि शादी के बाद भी उन्हें किस तरीके से दोनों को अलग किया जाए।

स्वतः जब अजय मिलता है भानु से अस्पताल में तो उसे पता चलता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया और भानु उसे ये बच्चा देना चाहता था, लेकिन इस शर्त में कि प्रीति को ये पता ना चले कि ये बच्चा अभी भी जीवित है, इसलिए वे अनाथालय में ना देकर वो अजय को दे देता है। कहानी कुछ सालों तक आगे बढ़ती है और प्रीति नहीं मान रही है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिरता जारी होती है। वह अपने हाथों में गुड़िया रखती है, मानती है कि वह उसका अपना बेटा है। उसके माता पिता तेजी से चिंतित हो जाते हैं। हालांकि प्रीति कुछ सुधार दिखाती है जब वह एक तस्वीर देखती है जिसे उसने शिमला में खींचा था जब वह अजय के साथ थी। माता पिता उसे वापस शिमला ले जाते हैं। अजय शिमला में रहता है और अपने बच्चे को उसने खुद ही पाला है। एक मौके पर बच्चा प्रीति से मिलता है और दोनों के बीच एक लगाव हो जाता है। अजय की मदद से बाद में वह उसे अपनी माँ के रूप में पहचानता है। वह उसके पास लौट आया और उसे अजय के पास ले गया और उन्होंने अपनी गलतफहमी को दूर किया। दोनों भानों के कारण उनके दिमाग में गलतफहमी का पर्दाफाश करते हैं। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को सुलझाने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और उसके बाद अपने बच्चे के साथ वे खुशी खुशी रहते हैं। इसीलिए तो इस फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

इमेज वाले मिथुन को रोमांटिक रोल में देखने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने से डर रहे थे। यही वजह थी कि ये बनकर तैयार होने के बावजूद भी ये फिल्म पूरे 2 साल तक रिलीज नहीं हो पाई। बाद में निर्माता बुकाडिया ने इसे खुद रिलीज करने का फैसला किया और उनका ये जो डिसीजन था वो भी बिल्कुल सही था। ये फिल्म सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर हासिल हुई। इस फिल्म के गीत भी तुमसे मिल करना चाहने के और वो दिल बल जानिए बहुत बड़े हिट हुए थे। HST बिहारी ने इस फिल्म के गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल द्वारा रचित इसके गाने थे। फिलहाल श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बस इतना ही।

श्रोता, हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रकाश वर्मा की छत्तीसगढ़ पलारी से। इनके साथ है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। अगला संदेश है संदीप मक्कर का। आर कुमार भी हमें लिख कर भेज रहे हैं। इनके साथ है आदि अरोड़ा, पिंकी लवली, मिंटू थॉमस पंजाब से। और जो अगला संदेश है वो है फागू राम यादव की। इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संबलपुर कांकेर से। संदीप मक्कर हमें लिख कर भेज रहे हैं, साथ ही पी एस नाहकर। और इनके साथ है निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान टाइडे और आशीष भागवत वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं। सोमदत्त लिखकर भेज रहे हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से। हीरा राममणि वर्मा हमें लिखकर भेज रहे हैं और उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अगला जो संदेश है वो निसार अली का। स्वर्ण सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है गुरनूर गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और राजदीप सिंह और इनके अन्य साथी। साथ ही शमसुल का

लिख कर भेज रहे हैं और अन्य साथियों का भी संदेश आ रहा है, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, जिनका नाम हम नहीं शामिल कर पाए इस कार्यक्रम में, उनका नाम हम जरूर शामिल करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे इस कार्यक्रम को लेकर ठीक 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 1:40 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार, उसके बाद आप सुन सकेंगे उर्दू में।

0: पंजाब जहां पर विकसित भारत का सपना है वहीं विकसित पंजाब बने, इस दिशा में हम आगे बढ़े।
1: सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर विच अटारी वाघा सांझी चैकपोस्ट, गुरदासपुर विच करतारपुर साहब लांघे, फिरोजपुर च सांगी चैकपोस्ट, हुसैनीवाला ते फाजिलका सरहद ते सादकी चैकपोस्ट तो इलावा सूबे दीआं होरनां इकाइआं ते हैडक्वार्टर ते योग समागम दा जश्न मनाया। प्रसिद्ध सांझी चैकपोस्ट अटारी विखे मुख मेहमान वजों शामिल होए बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर दे इंस्पैक्टर जनरल डॉक्टर अतुल फुलचेले ने सरहदी पिंड वासियां समेत भागीदारां नूं योग नूं अपने रोजमर्रा च शामिल करन लई उत्साहित कीता। केंद्रीय संचार ब्यूरो ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दीआं पंजाब ते चंडीगढ़ स्थित इकाइआं ने भी जागरूकता प्रोग्राम आयोजित करके कौमांतरी योग दिवस मनाया। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सरहदी खेतरां विच रेल नैटवर्क विकसित करने दी योजनावां ते काम चल रहा है। बीकानेर विच लालगढ़ साबरमती रेलगड्डी नूं रवाना करदिआं उन्होंने कहा कि यह प्रोजैक्ट न सिर्फ लोगों नूं बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगा सगों राष्ट्र सुरक्षा नूं भी मजबूत करेगा। उन्होंने दस्सिया कि राजस्थान च 76,000 करोड़ रुपए तो वध दे रेल प्रोजैक्ट चल रहे ने। श्री वैष्णव अज जयपुर तो खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रैस नूं भी रवाना करनगे। अंडर ग्रेजुएट मैडिकल कोर्सां विच दाखले लई नीट UG मुड़ प्रीख्या अज हो रही है। देश ते विदेशां दे वख वख शहरां च 22,89,000 तों वध उम्मीदवार प्रीख्या दे रहे ने। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी वलों अज होण वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लई जारी दिशा निर्देशां मुताबक प्रीख्या केंद्रां च दाखला सवेरे 11 बजे शुरू होया सी, जो हुण तों थोड़ी देर पहलां दोपहर 1:30 बजे बंद हो गया। विद्यार्थियों नूं इक नवां एडमिट कार्ड ते इक वैध फोटो ID लियाउणी लाज़मी कीती गई है। सरकार ने सोशल मीडिया से प्रसारित हो रहे उस दावे का खंडन किया है जिस विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत 6,550 रुपए की प्रोसैसिंग फीस न 10 लाख तय कर्ज दिए जा रहे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्यों की जांच बारे इकाई ने स्पष्ट किया है कि इस नाल संबंधित पत्र पूरी तरह फर्जी है। नॉर्वे के प्राइमरी स्कूलों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टूल की वरतों से करीब करीब पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वड्डे बच्चों की सिक्ख्या च इन्हां दी वरतों सीमित की जा रही है। प्रधानमंत्री जोनास गहस्टोर ने कहा है कि AI की वरतों छोटे बच्चों के अपनी सिक्ख्या के महत्वपूर्ण पड़ावों तो खुंझन के जोखम को बढ़ाती है। नॉर्वे की सरकार ने 2024 टेस्ट स्कोरों च व्यापक गिरावट को देखते स्कूलों च स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी सी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वैंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जिथे अमरीका ते ईरान दरम्यान गलबात होने की उम्मीद है। श्री वैंस ने कहा है कि दोवां मुल्कां दरम्यान परमाणु मुद्दों ते गलबात लई एक ढांचा विकसित किया जाएगा। तीन देशों की क्रिकेट लड़ी विच भारत ए अते मेजबान श्रीलंका ए दरम्यान आखिरी मैच खेडिया जा रहा है। यह मैच दमूला स्टेडियम खेडिया जा रहा है। श्रीलंका ए ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया। खबर लिखे जाने तक भारत ए ने 49 ओवरों च 8 विकटों के नुकसान से 370 दौड़ा बनाईया ने। भारत ने चेन्नई च खेडे गए तीजे ते आखिरी रोजा क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान 9 विकटों नाल हरा के लड़ी 3-0 नाल जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर च 1 विकेट के नुकसान से 224 दौड़ा बना के जित हासिल की। 5 विकटा लैण वाले प्रसिद्ध कृष्णा नूं प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। ते आखिर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कलकत्ता विच भारतीय जल सेना के 3 स्वदेशी समुद्री जहाज राष्ट्र नूं समर्पित किए। कहा भारत जहाज निर्माण खेत्र च एक नवी सोच नाल अगे वध रहा है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मौके प्रधानमंत्री ने योग अभ्यास की अगुवाई की। देशवासियों नूं योग नूं अपने जीवन का हिस्सा बनाउण दा सद्दा दित्ता। पंजाब भर विच वी वख-वख सरकारी ते निजी संगठनां अते संस्थावां वल्लों योग समागमां दा आयोजन। अंडर ग्रेजुएट मैडिकल कोर्सां च दाखले लई नीट UG मुड़ प्रीख्या अज हो रही है। अते तीन देशां दी क्रिकेट लड़ी च भारत ए अते मेज़बान श्रीलंका ए दरम्यान आखिरी मैच खेडिया जा रहा है। इस नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में

0: में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के तीन जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरूनी मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज में नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी कालिबाफ से अमन बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में दम्बुला में तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां बैनल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार अंदाज से बढ़ती उम्र के लिए जिंदगी भर योग को अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से योग का बैनल अक्वामी दिन मनाने में मुल्क की क्यादत की। मुश्तरका योग प्रोटोकॉल योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी मुकाम पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी कसरत नहीं और न ही ये किसी मखसूस उम्र तक महदूद है, बल्कि ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरीसन ग्राउंड पर योगासन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, उहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क़यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्दा योग तंजीमें इस तकरीब में शामिल हुई, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने कल सऊदी योग कमेटी और मुकामी इदारों के साथ मिलकर प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में योग से मुतालिक तकरीब मुनक़िद की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने शिप बिल्डिंग शोबे के लिए एक नए नजरिए के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के तीन जंगी जहाजों INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाजों के डिजाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिजाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाजों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन

0: के तीन पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और

योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में

0: ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूहों के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MD कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सामिन अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 के नशियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। मीडियम वेव सोचिंग ना गब्याना यशुवियन भी किलोहर्ट्ज़ का दियो आकाशवाणी करगिलिन वॉक्स पो निमे तो सोत निज नफेत सोंसो कसाता शीना प्रोग्राम यान मजात पुनर प्रोग्राम फोचिकान पेन जहरा बानो प्रोग्राम प्रोड्यूसर पेन गुलजार हुसैन।

0: हर चीज
1: या तो चूनो बिल बाड़ो ने बिल
0: बिल्कुल जो चूनो बाड़ो थे ने बिल के हर एक बिल तो हर एक से टाउन का जो ना जो अकीने जगह को ते हर स्कूल सेमिनार थे ना
1: बिल्कुल
0: जक ए ना से राजा अनिथ्या आचा या को ते बेस टीवी जो पाच ने रेडियो कौन नस की
1: यो वा जो के बिल
0: अन से जो फायदे हैं अन से जो जो कर थे ना ते आज जकोरे खबर गहिन तो से ऐसा पे सरकार से ऐसी चीजों जाकोले फायरों की कोशिश का लाई
1: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल से आसोते हर एक रे मुशो ए तो अन चीज क्रम थ्योनी जरूरी बिल
1: बिल्कुल बिल्कुल जो मी तो अवाल गरजी की इसके कोते स्कूल हो जा जो मी पशेस मखसूस स्कूल हो जा योगा टीचर दे हूँ जो तो सो से चल असेंबली जा मालमुला रे कम से कम 20 मिनट से घंटा भगाई या 20 मिनट रजनो रे योगा छाड़ू जो तो आओ बाल गा को तो मैं सु योगा छे के जा अब आओ वाली बॉडी जो खुद ब खुद रसे
0: फिटनेस रसे बॉडी ताकत है नहीं जो या के जुन तो ने चीज तो कुल शुरू ने मकसद यही हम गवर्नमेंटो के अनि आने बालोरे अनि बारे एलएमबी
1: जनरेशन बिल ओया
0: अनि सर एलएमबी अनि बालोरे की अनि चीज अनि से अनि अनि फायदे हां तो चुनो तो रे से चीज खबर बन तो बड़ो तो रे
1: अहमियत
0: तो शायद दी है से कार्यो हर स्कूल एक होते सरकार से कोशिश जो हूं कि योगा टीचर थे छोरन को तो हॉस्पिटल में पहुंचना योगा थे जको छोरन ना कि के जुन तो हर किस्म पेशेंट हूं चेकर हाथी कर बेनुष्टु रेबिन पे आज नुष्टु सिनोर का योगा इंस्ट्रक्टर छोरे सुसे आनिया एक्सरसाइज थे न्यू से चीज का योगा हॉस्पिटल एक्चुअली ने बोन तो इंपोर्टेंस रिस लेवल आ सकते खबर भी लिख के यानी सिर्फ हॉस्पिटल है फॉर यू मेजर आसु जागर ने चीज तो यस तो बेहतर भी
1: बिल्कुल जो मोहम्मद शब्बीर हुसैन थोलाई शबो के रजीगा योगो बारे जा तो शिना प्रोग्राम कुंडे नेक्सा जारूरे मीगा अनि बुया थनी पैगाम हनी कि योगा डे वो इम्पोर्टेंस असोचे इम्पोर्टेंस जोनी का आवजी और इम्पोर्टेंस असोचे गिनोनी का आवजी थे के छों तो असोचे लेल है खास कर मुसने गामो बारे जरज में इसकी योगा या थे ना बाता ये अलाय बलाय बुझे थे ना बात हा तो असने सजारे मलारे भोजन नुशु तो असने सजार मलार से बालुल मलार का इम्पोर्टेंट दे निश के तो बोजोन आउजी चाहे रोस स्कूल योगा डे मनाई थे तो का कैंप पे क्विल तो का या डिपार्टमेंटो लेवल आ जाती तो का जोक थे थील तो का योगो डे उच्चक अश बीगा एक जूनो योगा डे बिल तो ने तमाम सजारे सजारुरे मी अनि बुया थनी कि तो में बाल मुलाये बोनी जारे खोरे बोनी जवानी बोनी बुढ़े योगा छोनी बोजोनी जरूरी बिल योगा डे जा शामिल बोनी लाई जरूरी बिल और सारे गे रसो जरूरत जैसे अहमियत जोग बिला थे असो के लेट होनी गा लाई जरूरी बिल को तो थो रजी असनो मना ची मोहम्मद शबीर हुसैन रजी गो की हॉस्पिटल जगह योगा थेन मतलब मुलाजिमो छोरे हाँ थे के छोन तो पेशेंट के क्या जैसे दिमागी प्रॉब्लम वो आलो या जैसे हाथी पे से क्रम ने थे आलो या जैसे डिम से क्रम ने थे आल तो जो नोर सारे फैल आ रही लेकिन असोच गुनियों ने आवाजी की बे सारे ने पेश तो अन्य चीज मुछोर थे बे उन तो असोच लोस्ट आनोबत ने ई थे तेने रजी गा की दशमानी से गा अश बी गा एक के जून उछक योगा डे मनोनी मकसद जो बिल थे अश पूरा साल जा रिमो देश बिल थे ना जो बुढ़ो जा 21 जून सालो बुढ़ो जो रिमो देश बिल थे ना तो अनु देश तो बुढ़ो जो बड़ो देश योगा देश जर्मनियों तो थोड़े से ही अकेली जगह जगह पे सोचता है कि अनु करना वो अहमियत करना वो जरूरी देश एक बिल थे तो सिस नला अनु के 2026 थीम का अनि ही कि इंसान रे जैसो डिम यानी बेस तो नजे मी मोशुले मिस मियो कुटुशुलो मी अच्छी शुले नी मी हाथी शुल ना पु इंसानो अकेनो डिम पूरी दुनिया तो डिम बिल थेरा जी बोनी आसी कार्यो पूर असनो माहौल बोनी असनो अलाका बोनी असनी मले की हिंदुस्तान बोनी या असने पूरा सर पलो का जे इंसान रे जैसनी सियात जैसनी फिटनेस छोड़ियो नी जरूरी बिल आसो कार्यो अश मतलब बड़े बड़े दशमानो जा आपसे जा आज से बहुत लाव साल पहले अनुदेश मनोनी मकसदों बारे जा जनोरे लेल बोई दशमानो जा अश अनु 21 जून योगा डे वो कार्यो छोरेगाने तो जारोगा सजा

मुश्किल लाओ असिलो क्योंकि अश सोच लेल हई मुहरम गया जू हई ससिस नला नला अश इंटरनेशनल डे ऑफ योगा गा हूँ तो ने असों के इंसानी मी अवल का रजी गेस कि इंसानी बुढ़े जो बड़ी दौलत इंसानी सियात बिलजू अगर रसो रसनो डिमो ख्याल छोड़ो तो रसी रसनी सियातो ख्याल छोड़ो तो रोस रसनो गोश का ठीक ते छोड़ो नो अगर रसो रसनो माहौल का ठीक सा चोन हो से नला नला दुनिया का ठीक सा चोन तरकी का चोन रो मुछोर का बोझोन हो इंसान कुटी साधने दो अछो साधने दी पे शाहती साधने दो तो से इंसान बुढ़ो जो गरीब बुढ़ो जो लाचार बू के छो तो रसो रसनो डिमो साधनो डिमो बॉडियो पार्ट हो जनो जस रे साथ ने दे बिल तो रोस ते आगे गे रोस मुलो को जो खिदमत थी अकिने कुयो जो खिदमत थी बचो जो खिदमत थी जो आसो कार्यो मी अश आकाशवाणी करगिल जो शिना प्रोग्राम कोंडे नेक्स्ट सजारु बुडो रे अनि पैगाम दे मेस अनि मैसेज दे मेस की तो मी सियातो ख्याल छरियोनी लाई जरूरी बिल बाई खोनी टेमा जा बाई खोनी सी बाई खोनी ताकि इंसान रे ले लो कमी ने भी दिमागी प्रॉब्लम ने भी अकिनो डिमो मतलब ताकत सची ताकि रोस पूरा गोश रसो गोश ठीक बोयाजी ता तो दल्बो रसो कुई ठीक बोयाजी या फिर रसो अलाका ठीक बोयाजी रसी मुलुक हिंदुस्तान ठीक बोयाजी थे जो तो ने मी अनि बुया थई सजरा रू बुड़ो रे अकिनो जिसमो ख्याल छोड़ोनी जिसम बाईस नला नला इंसान रे सफाई छोड़ोनी गलाई जरूर बिल सफाई नला नला अकिनो छिलो खोई दोयोनी छिलो खोयो सफाई गोजो सफाई गालो सफाई खास कर छुम छखाश बेसु कोतो तो बेसु गवर्नमेंट रे शुक्र थो नौ जों की दर दरे जा छुमो गाड़ी ओई असनो छुम बुड़ो साफ सुथरा थे हर इंजू ने बिल तो बेसु खड्डे दू छोनी आजो छम रोयोनी शुकु छम रोयोनी बोन तो माहौल साफ बिलो माहौल बेस जो तो नजु असनो छम शका शरी वोई जफाल थोनस तत आई वोई खोनस तत असनो जे किसम किसमो बीमारी बे नहीं तो ने अश 21 जून छक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हूं थे बे बुड़ो रे लेल हैं तो ने अश अकिनो गाम जबोनी अकिनो कॉलेज के बोनी अकिनो डिस्ट्रिक्ट लेवल जबोनी कौन गा योगा मनयु हाँ तो सदे जरे खोरे चुने चवले सस मलारे बुढ़ ये शिरकत बोनी लाई जरूरी ही तो शिना प्रोग्राम कुंडे ने सजारो मुश्किल लाओ असिलो लेकिन खेण से इजाजत एक दी नूश बड़ा लाख आकाशवाणी करगिल जो शिना प्रोग्राम पुनर्गी मो हाजिर बेम सद डगमोरे जा इजाजत खुदा यार।

दासन सपयते शीना प्रोग्राम गेने न्यूट पिन पुनर मीडिया में का दियो आकाशवाणी करगिलिन मीडिया में 1584 किलोहर्ट्ज मीडिया में 684 किलोहर्ट्ज एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन एआर पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन से पहले के 3 बजे हुआ चाहते हैं सामीन आपसे लेकर शाम के 5 बजे तक अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर आप सुनेंगे ड्रामा डॉक्टर सिद्धिनाथ कुमार का तहरीर करता। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

0: ये आकाशवाणी है, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज योग के 12वें बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर एमबी कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिनमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा हुआ है। और नॉर्वे ने सीखने के अमल पर मनफी असरात को रोकने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में जनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां

0: जा रही हैं। अमेरिका के नेचुरल जेडी वेल्स स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मुजाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ होने का भी इम्कान है। ईरान से भी एक वक्त स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कहा था कि लबनान में इसराइली हमलों की वजह से आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया गया है और उसने खबरदार किया कि अगर जंग नहीं रोकी गई तो बातचीत कोई ज्यादा मुफीद साबित नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में धमकी दी है कि अगर 60 दिन के अंदर ईरान के साथ कोई हतमी समझौता नहीं होता तो अहम आबी गुजरगाह पर अमरीकी नाकाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। ईरान के वफ की क्यादत पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीवाफ करेंगे, जिसमें वजीर खारजा अब्बास इराकची और सेंट्रल बैंक और तेल से मुतालिक अहदेदारों के अलावा दीगर अहम अफराद शामिल होंगे। ये बातचीत जुमे को शुरू होने वाली थी लेकिन ईरान ने लबनान में जंग में शिद्दत आने की वजह से इसमें शिरकत करने का अपना मंसूबा मनसूख कर दिया। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट यूजी का दोबारा इम्तहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तहान दे रहे हैं। इम्तहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट यूजी का दोबारा इम्तहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो बेखौफ होकर इम्तहान दें। वजीर मौसूफ ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने यकीन दिलाया कि इम्तहान को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने कल बानिहाल का दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने यात्रा कैंप का मुआयना किया और यात्रियों के कयाम, सफाई सुथराई, पीने के पानी, बिजली की सप्लाई, तिब्बी देखभाल और सिक्योरिटी समेत यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। नॉर्वे ने सीखने के अमल पर मनफी असरात को रोकने के लिए एलिमेंट्री स्कूल में जेनरेटिव AI टूल्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गहर स्टोरे ने बताया कि AI के इस्तेमाल से खतरा बढ़ रहा है। नौजवान बच्चे अपनी तालीम की अहम सरगर्मियों से गुरेज कर रहे हैं। स्कूल में सबसे अहम चीज ये है कि बच्चे पढ़ने लिखने के अलावा रियाजी जैसे मजमून को भी सीखें। उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर में शुरू होने वाले स्कूल के नए सेशन से नए मेयारात नाफिज किए जाएंगे। हुकूमत ने 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर भी पाबंदी लगा दी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज योग के 12वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदामात किए जा रहे हैं। और ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर JD वेंस और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर MB कालीबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन की खिदमत में सरवरी बानो का आदाब। इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

आपसे बात कर रहे हैं मेरी पसंद प्रोग्राम। ये पहला नगमा है स्वदेश फिल्म से, आवाजें हैं उदित नारायण और कैलाश खेर की।

हर साल 21 जून को दुनिया भर में आलमी योगा डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए योगा की अहमियत से आगाह करना है। योगा एक कदीम मशक है जो जिस्म, जहन और रूह के दरमियान तवाजुन पैदा करने में मदद देती है। बाकायदगी से योगा करने से जिस्म मजबूत होता है, जहनी दबाव कम होता है और इंसान खुद को ज्यादा पुरसुकून महसूस करता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद। अगला नगमा है लगान फिल्म से, आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक की।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी है। अब पेश है डॉक्टर सिद्धिनाथ कुमार का तहरीर करदा ये ड्रामा, सुनिए।

0: मैं बंजर धरती हूँ जिसमें पौधे नहीं उगते, फूल नहीं खिलते, फल नहीं लगते। मैं बंजर धरती हूँ जिसके मन में तमन्नाएं जागने से पहले ही सो जाती है, सपने बनने से पहले ही मिट जाते हैं। मैं बंजर धरती हूँ जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं, जिंदगी भर बनी रहती है।
1: माँ जी, आप कुछ कह रही हैं?
0: तू मुझे माँ जी क्यों कहती है?
1: यही तो कब से कहती आई हूँ।
0: गलत कहती आई है।
1: आपने कभी भी कुछ नहीं कहा मुझसे।
0: इसमें कहने की क्या बात है?
1: आप शुरू में ही मुझसे कह देती कि आपको आपको क्या कहना चाहिए।
0: शुरू में मैंने इस बात का ख्याल ही नहीं किया।
1: तो अब क्या हो गया है?
0: कुछ नहीं हुआ है।
1: आप मुझे पता क्यों नहीं देती कि मैं आपको क्या कहूं?
0: जो मन में आए कहे।
1: आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या?
0: तुझसे नाराज क्यों होंगी लक्ष्मी? इतने बरसों से मेरे साथ है, इतनी खिदमत करती है, इतने अच्छे ढंग से सारे काम देखती है।
1: आप तो मेरी इतनी तारीफ करने लगी।
0: तू ही तो है घर में मेरे साथ, और यहां कौन है?
1: माँ जी कहने पर आपने मुझे टोक दिया तो मुझे लगा शायद आप मुझसे नाराज हो गई हैं।
0: यूं ही कह दिया था मैंने, कुछ सोच रही थी।

0: कोई बात हुई है क्या?
1: बात क्या होगी?
0: आप बाबूजी के ना आने पर परेशान हैं क्या?
1: परेशानी की वजह तो है ही, कहकर गए थे कल ही आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए।
0: घर पर शायद माँ ने रोक लिया होगा।
1: हाँ, हो सकता है।
0: आप परेशान तो उसी दिन से लगती हैं जिस दिन से बाबूजी अपने गांव गए हैं। वहां कोई जरूरी काम है क्या?
1: मुझे पता नहीं, हो सकता है।
0: आपसे उन्होंने कुछ नहीं कहा?
1: उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं था। घर से खत आया था, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ माँ ने जल्दी आने को लिखा था। चले गए, बुलाने की कोई वजह नहीं लिखी थी, इसी से दिल परेशान है।
0: घर जाने पर देर हो ही जाती है, इसमें ऐसी बात नहीं कि आप खाना पीना भी छोड़ दें।
1: मैंने खाना पीना कहाँ छोड़ा है?
0: कल रात आपने कुछ नहीं खाया और आज भी नहीं खाया।
1: कल रात तबीयत ठीक नहीं थी, और आज सुबह नाश्ता तो किया था।
0: नाश्ते से पेट भरता है क्या? खाना तैयार है, ले आऊं?
1: नहीं, अभी नहीं, खा लूंगी, तुम जाकर खा लो।
0: चाय पियेंगी आप?
1: कहती हो तो बना लाओ।
0: अभी लाती हूँ।
1: लक्ष्मी नहीं समझती कि मेरे मन में कैसी बेचैनी है, समझकर भी क्या कर सकती है, कोई भी क्या कर सकता है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि कुछ कर सकेगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता।
2: नहीं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता
3: जी। वैसे डॉक्टर साहब, आपने अच्छी तरह देख लिया है?
2: मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। ये रिपोर्ट आपके सामने है मिस्टर राकेश।
3: मैं इन्हें क्या समझूंगा?
2: आप और लोगों से भी सलाह ले सकते हैं।
3: और लोगों से क्या सलाह लेनी है डॉक्टर साहब, आप स्पेशलिस्ट हैं, आपकी राय है। देखिए, इसमें किसी ऑपरेशन वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता।
2: मैंने कह दिया ना आपसे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये हमारे हाथ से बाहर है।
3: यानी बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है?
2: यूं दुनिया में चमत्कार भी होते हैं मिस्टर राकेश,
3: साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकता।
2: जो बात इंसान के बस से बाहर है, उसके लिए परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसा केस हमारे सामने पहली बार तो नहीं आया है, ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर पाते।
3: जी, आरती, तुम्हें कुछ पूछना है?
1: मुझे क्या पूछना है, सब तो सुन ही रही हूं।
0: माँ जी, चाय ले आई हूं।
1: आ गई तू?
0: आप सो रही थी क्या?
1: नहीं तो, यूं ही सोच रही थी तुम्हारे बाबूजी अभी तक क्यों नहीं आए।
0: ट्रेन वक्त से ना मिली होगी, या हो सकता है वहीं एक दो दिन के लिए रुक गए हो।
1: मैं जानती हूँ वहीं रुके होंगे, माँ ने रोक लिया होगा।
0: चाय तो पी लीजिए आप।
1: पी रही हूँ लक्ष्मी।
4: तुम जानते हो राकेश, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है?
3: तुमने कुछ लिखा तो नहीं था माँ?
4: क्या लिखती खत में?
3: क्यों, कोई खास बात है?
4: खास बात तो है ही बेटा। अब तुमने लिखा था कि डॉक्टरी जांच करा रहे हो, फिर कुछ पता नहीं चला कि डॉक्टर ने क्या कहा?
3: कहा वही माँ जिसकी हम उम्मीद करते थे।
4: क्या कहा? बहू को बच्चा नहीं होगा?
3: नहीं।
4: वजह नहीं बताई?
3: वजह हम तुम क्या समझेंगे माँ, बस यही समझ लो कि कुछ ऐसा नुक्स है जिसमें डॉक्टरी से कुछ नहीं किया जा सकता।
4: अब नुक्स बहू में ही है ना?
3: हाँ माँ, जांच से तो यही मालूम हुआ।
4: हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, शादी को 10 साल हो गए और अब तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरी वजह क्या हो सकती है?

0: अपनी तरफ से पूजा पाठ भी कम नहीं कराया बेटा।
1: जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है।
0: नसीब की ही बात तो है बेटे, जो ये बहू घर आई।
1: लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है?
0: उसका कसूर नहीं तब किसका कसूर है? तुम ही तो कह रहे थे कि डॉक्टर ने भी यही कहा है।
1: भगवान ने ही उसे ऐसा बना दिया है तो उसका कसूर कैसे कहा जाएगा?
0: कसूर किसी का भी हो, अब तो सोचना है कि क्या किया जाए।
1: अब करना क्या है?
0: कुछ नहीं करना है।
1: मुझे तो नहीं मालूम।
0: इसी तरह तुम्हारे पिताजी भी कहते तो तुम इस दुनिया में नहीं आए होते।
1: नहीं आया होता माँ तो क्या होता?
0: तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे लिए हमने कितनी दुआएं मांगी। 8 साल तक तुम्हारी बड़ी मां के कोई बच्चा नहीं हुआ। तब तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी की। औलाद के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। साधु संत नजूमी डॉक्टर सबके पीछे पीछे दौड़े, तब कहीं जाकर तुम्हारी पैदाइश हुई। नसीब ऐसा कि फिर ना कोई लड़का हुआ और ना कोई लड़की।
1: ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ?
0: जो बेहतर हो वो करना चाहिए।
1: तुम चाहती हो मैं दूसरी शादी कर लूं?
0: इसमें हर्जी क्या है?
1: नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा।
0: क्यों नहीं होगा, इसमें दिक्कत क्या है?
1: मैं तुम्हें कैसे बतलाऊं कि क्या दिक्कत है इसमें?
0: बहू नहीं चाहेगी, तुम्हारी बड़ी मां भी तो नहीं चाहती थी।
1: नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूं माँ। अगर मैं कह दूं तो आरती उसकी मुखालफत नहीं करेगी।
0: तब क्या परेशानी है?
1: मैं खुद उसके दिल को किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचाना चाहता।
0: इसमें दुख देने की बात कहां आती है राकेश? अगर दूसरी शादी करने से औलाद हो जाए तो क्या उसको खुशी नहीं होगी?
1: मां, क्या बड़ी मां को खुशी हुई थी?
0: अब ये मैं कैसे कह सकती हूं। और बेटा, हर बात में मवाजना ठीक नहीं होता।
1: मैं मवाजना नहीं कर रहा हूं मां।
0: तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए राकेश।
1: क्या सोचना चाहिए?
0: तुम शादी कर लेते तो अच्छा होता।
1: लेकिन इसकी जरूरत क्या है?
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: ये तो समझने के ढंग पर मुनस्सर है मां, घर में कोई बच्चा नहीं तो क्या हुआ इससे?
0: बहू भी यही कहती है।
1: नहीं, वो तो चाहती है कि उसे कोई बच्चा होता, लेकिन किस्मत में नहीं है तो वो क्या कर सकती है?
0: तुम्हें अपनी दुनिया में कोई कमी नहीं महसूस होती?
1: कमी क्या महसूस होगी मां, जिंदगी में इतनी सारी बातें हैं, उनमें आदमी लगा रहे तो कमी महसूस करने की फुर्सत कहां रहेगी?
0: तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इस खानदान के बारे में नहीं सोचते।
1: तुम ही बतलाओ क्या सोचूं?
0: कभी सोचा है तुमने, कोई औलाद नहीं हुई तो क्या होगा?
1: क्या होगा?
0: तुम्हें कुछ पता नहीं चलता क्या?
1: नहीं तो?
0: तुम अब बच्चे तो नहीं हो राकेश।
1: तुम्हारे सामने तो हमेशा बच्चा ही हुआ।
0: तुम जानते हो तुम्हें हमारी अकेली औलाद हो, तुम्हें कोई बच्चा नहीं होगा तो ये खानदान ही खत्म हो जाएगा राकेश।
1: खत्म हो जाएगा तो हो जाए ना, फिर क्या होगा? दुनिया में अब तक कितने खानदान खत्म हो गए, कितने ही खानदान खत्म होते रहते हैं, इसे क्या फर्क पड़ जाता है? दुनिया तो नहीं खत्म होती।
0: ओ राकेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं दुनिया की बात नहीं अपने खानदान की बात कर रही हूं। कोई औलाद नहीं हुई तो बुजुर्गों को पानी देने वाला भी नहीं रह जाएगा।
1: जिनके खानदान खत्म हो गए हैं उनके अजदाद को कौन पानी देता है?
0: ओ तुम नहीं समझोगे बेटा, लगता है पूरी तरह नास्तिक हो गए।
1: नहीं माँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, भगवान में यकीन रखता हूँ, भगवान की मर्जी में यकीन रखता हूँ।
0: क्या भगवान की यही मर्जी है कि तुम बे औलाद रह जाओ और हमारा खानदान खत्म हो जाए?
1: हालात से तो ऐसा ही लगता है ना।
0: नहीं बेटे नहीं, भगवान की मर्जी को गलत मत समझो। भगवान ने तुमको अक्ल दी है बेटा, तुम्हें अपना भला बुरा समझना चाहिए।
1: कोशिश तो यही करता हूँ माँ।
0: तुम अपने लिए नहीं सोचते तो कम से कम मेरे लिए तो सोचो।
1: तुम्हारी खिदमत के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ माँ।
0: जिंदगी में सभी आराम तो मैसर है बेटा, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है कि तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिला लेती, इस जिंदगी में पोते को देख लेती।
1: नसीब के सामने किसी की नहीं चलती माँ।
0: तुम्हारे पिताजी भी रहते तो यही चाहते।
1: मैं सब समझता हूँ माँ, लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है?
0: मैंने कहा ना बेटा, तुम शादी कर लो। अब तुम कहो तो मैं बात भी चलाऊं।
1: लेकिन मैं अपने मन को जानता हूं मां, मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा।
0: मेरे लिए भी नहीं।
1: आरती मुझ पर भरोसा रखती है मां, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता।
0: मैं उसे धोखा देने को नहीं

0: राकेश, उसे समझा कर सारे हाल बता दो।
1: लेकिन जो मुझ पर इतना यकीन रखे उसे मैं कैसे कह सकता हूं?
0: तुम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे।
1: लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं मां?
0: बहू तुमसे कहे तब तो मानोगे।
1: वो कैसे कह सकती है?
0: मैं समझाऊंगी उसे।
1: तुम समझाओगी?
0: क्यों, मुझे ये इख्तियार नहीं है क्या?
1: है क्यों नहीं मां, मैं इख्तियार की बात नहीं करता। अगर फर्ज करो बहू तुम्हारी बात ना माने तब?
0: उसकी फिक्र मैं नहीं करती, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। अच्छा मैं चलती हूं तुम्हारे साथ।
1: इतनी जल्दी क्या है मां?
0: क्यों, मुझे ले चलने में कोई परेशानी है तुम्हें?
1: परेशानी क्या होगी मां, मैंने तो खुद कितनी बार कहा है कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ वहीं रहो।
0: तो चलो, मैं चलूंगी। मन में बहुत दिनों से एक बेचैनी है, शायद कोई रास्ता निकल आए।
1: तो फिर चलो मां।
0: चलो।

0: खाना लिया हूँ माँ जी?
1: नहीं बहू, अभी नहीं खाऊंगी। दिन भर इस तरह खिलाती रहोगी तो जीऊंगी कैसे?
0: आप भी क्या कहती हैं माँ जी, इस महंगाई के जमाने में आपके लिए कुछ कर कहाँ पाती हूँ।
1: जो करती हो उसे कम समझती हो, मैं तो खाते खाते परेशान हो गई हूँ।
0: मेरे नसीब जो आप यहाँ आई।
1: आने को तो हमेशा सोचती हूँ, पर वहाँ का घर जमीन किस पर छोड़कर आऊं। इस बार किसी तरह निकल आई हूँ, फिर तुम्हें देखे भी तो बहुत दिन हो गए थे।
0: अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे भी घर बहुत अकेला अकेला सा लग रहा था।
1: वो ही तो देख रही हूँ मैं, घर कितना सूना सूना लगता है। इसमें अकेलापन आदमी को नहीं खाएगा तो होगा क्या?
0: लेकिन किया क्या जा सकता है?
1: मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तब से यही सोच रही हूँ कि घर में सिर्फ दो आदमी और एक बाहर से आई नौकरानी, कैसे रहते हो तुम लोग?
0: देख ही रही हैं आप।
1: बिना बाल बच्चों के घर अच्छा नहीं लगता बहू।
0: लेकिन बाल बच्चे अपने हाथ में तो नहीं है।
1: आदमी के चाहने से सब कुछ होता है।
0: डॉक्टरों ने क्या कहा आप नहीं जानती क्या?
1: सुना है, राकेश ने मुझे बतलाया है।
0: जब नसीब ही उल्टा हो तो कोई क्या कर सकता है?
1: नसीब को बदला जा सकता है।
0: नसीब भी बदला जा सकता है?
1: हाँ बहू, अपने हालात से समझौता करके नसीब को बदला जा सकता है।
0: कैसे बदला जा सकता है? मैं तो नहीं समझ पाई।
1: इसी के बारे में तो बात करने आई हूँ। राकेश ने जब से बताया मैं बहुत परेशान हूँ। क्या किया जाए कि इस घर में बच्चों की किलकारी खिलखिलाहट सुनाई पड़े? तुमने कभी सोचा है इस पर?
0: मैं क्या सोच सकती हूँ माँ जी?
1: तुम राकेश से क्यों नहीं कहती कि वो फिर शादी कर ले?
0: फिर शादी कर ले?
1: हाँ बहू, औलाद के लिए लोग कई कई शादियां करते हैं।
0: माँ जी
1: इसमें कोई बुरी बात नहीं है बहू, बाल बच्चों के लिए दूसरी शादी करना ये तो दुनिया का दस्तूर है।
0: मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में?
1: सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही तो मुनस्सर है।
0: मेरे कहने पर कैसे मुनस्सर है? आप लोग जो ठीक समझे कर सकते हैं।
1: मैं जानती थी तुम मुखालफत नहीं करोगी, लेकिन बिना तुम्हारी मर्जी के हम कुछ नहीं करना चाहते थे।
0: मेरी मर्जी की क्या जरूरत है?
1: तुम्हारी राय तो सब कुछ है बहू, बिना तुम्हारे कहे राकेश कुछ नहीं करेगा।
0: उन्होंने कहा है?
1: कहा नहीं है, पर मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता।
0: उन्होंने मुझसे इस सिलसिले में कभी कुछ नहीं कहा।
1: वो कुछ कह भी नहीं सकता।
0: आपसे उन्होंने कहा?
1: नहीं, उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। मैं खुद उससे कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी राय हो तब कहूँ ना। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा जब तक तुम नहीं कहोगी।
0: मैं क्या कहूँ उनसे?
1: यही कि वो फिर शादी कर ले, घर में बाल बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: आप जो कहे मां जी मैं कर सकती हूँ।

0: अंदर से इस बात के लिए तैयार नहीं होता।
1: मैं सब समझती हूँ बहू, मगर दिल को समझाना पड़ता है।
0: नहीं माँ जी, नहीं, मैं अपने दिल को नहीं समझा सकूंगी। आप लोग अपने मन से जो चाहे कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन लेकिन मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कह सकती माँ जी।
1: तुम नहीं चाहती कि इस घर में कभी खुशियां आए, बच्चों की किलकारी से अपना छोटा सा घर भी गूंजे, बच्चे इस घर में खेलें कूदें और अपनी हंसी खुशी से तुम्हारी जिंदगी को भर दें। बच्चे होंगे तभी इस घर में कभी शहनाइयां बजेंगी, बुढ़ापे के लिए कोई सहारा भी तो चाहिए बहू हमें। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा घर आंगन जिंदगी भर सोना रहे?
0: ये मैंने कब कहा? ऐसा मैं कभी नहीं चाहती।
1: नहीं चाहती तो इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कहती बहू, तुम्हारे लिए कहती हूँ, राकेश के लिए कहती हूँ। जीने के लिए अभी पूरी जिंदगी बाकी है, जीने के लिए कुछ चाहिए बहू, कुछ चाहिए। अब क्या सोचती हो तुम?
0: मैं क्या सोच सकती हूँ?
1: शायद तुम सोच रही हो कि इसमें मेरी गरज है।
0: नहीं, मैं ये सब नहीं सोचती
1: बहू, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बुढ़ापे में अपने घर को हरा भरा देख सकूं और इस खानदान का नाम चलता रहे। बहू, तुम संजीदा क्यों हो गई हो? बोलती क्यों नहीं कुछ?
0: मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं।
1: घबराने की कोई बात नहीं है बहू, जल्दी की भी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें सारी बात समझा दी है, अब तुम्हें इस पर सोचना चाहिए।
0: सोचूंगी।
1: यकीन रखो बहू, बगैर तुम्हारी इजाजत के कुछ नहीं होगा।
0: यकीन है मुझे।

0: बंजर धरती हूं, बंजर धरती जिसमें पौधे नहीं उगते, फूल नहीं खिलते, फल नहीं लगते। बंजर धरती जिसकी प्यास बुझती नहीं, हमेशा बनी रहती है। लेकिन प्यास बुझाने की सोच तो रही हो। ये किसकी आवाज सुन रही हूं मैं? तुम्हारी ही आवाज है आरती। मेरी आवाज? ये पहेली मैं समझ नहीं पा रही। पहेली नहीं है आरती, जिंदगी की सीधी सादी सच्चाई। लगता है तुम्हारी सास ने जो तुमसे कहा है उसका असर तुम पर हुआ है।
1: क्या असर हुआ है?
0: मुझे कहना पड़ेगा। तुम्हारी सास कहती है कि अपने शौहर राकेश से कहो कि वो दूसरी शादी कर ले। हाँ, बाल बच्चे होंगे तो जिंदगी में थोड़ी चहल पहल आ जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में, इस घर के हर आदमी की जिंदगी में मैं भी इस घर में शामिल हूं। यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। जो बाल बच्चे होंगे तुम्हारे होंगे, मेरे नहीं होंगे। लेकिन इस घर के तो होंगे, मेरे शौहर के तो होंगे। घर में बाल बच्चे हो इसके लिए क्या जरूरी है कि राकेश दूसरी शादी कर ले? शादी नहीं होगी तो बाल बच्चे कहां से होंगे? तुम्हें मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है मेरे बारे में? मुझे सब मालूम है, इसीलिए तो कह रही हूं। जिस देश में हर सेकंड हजारों बच्चे पैदा होते हैं, उस देश में क्या बाल बच्चों के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है?
1: क्या कह रही हो तुम? मैं समझ नहीं पाई।
0: मैंने कहा इस देश में बच्चों की कमी नहीं है, फिर शादी की क्या जरूरत है? अगर बच्चों की इतनी ही तमन्ना है तो खोजने पर बहुत सारे मिल जाएंगे।
1: लेकिन वो अपने बच्चे तो नहीं होंगे?
0: जो तुम्हारी सौत के बच्चे होंगे तुम्हारे होंगे?
1: नहीं, मेरे नहीं होंगे, लेकिन मैं उन्हें अपना मान लूंगी।

0: किसी भी बच्चे को अपना मान सकती हो।
1: तुम कहना क्या चाहती हो?
0: तुमने कभी सोचा है कि अगर राकेश की दूसरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी क्या हैसियत होगी?
1: क्या हैसियत होगी?
0: कशिश का मरकज हमेशा नया होता है।
1: यानी
0: राकेश की जो दूसरी बीवी आएगी, सबकी कशिश का मरकज वही होगी। घर और बाहर सबकी नजरों का मरकज वही बनेगी। और अगर उसके कहीं औलाद हो गई तो फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा।
1: नहीं पूछेगा?
0: हाँ, नहीं पूछेगा। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, ना घर में ना समाज में। आज तुम्हें अपने शौहर के प्यार का हक हासिल है। ये हक ही नहीं, पूरा प्यार खत्म हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: होगा होगा, यही होगा।
1: चले जाओ चले जाओ, मेरे मन को और बेचैन बनाने वाली कमजोरी, तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ।
0: मेरी बातें कड़वी लगती हैं ना? सच हमेशा कड़वा होता है। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, इसीलिए कह रही हूं ये सब। कभी तुम्हें जिंदगी में प्यार दुलार नहीं मिला, मां बाप बचपन में मर गए, तुमने उनका प्यार नहीं जाना। चाचा के घर में हक तलफी की जिंदगी जीती रही, रहम खा के उन्होंने तुम्हारी शादी कर दी। अब शौहर का जो प्यार तुम्हें मिला है वो भी छिन जाएगा तुमसे।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा।
0: जोश में आकर जिंदगी की सच्चाई नहीं छुटलाई जा सकती।
1: मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं सुनना चाहती, तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती।
0: मेरी बातें कड़वी लगती हैं? सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कहना मेरा फर्ज था, मैंने कह दिया। उस पर सोचना तुम्हारा काम है।
1: सुनो सुनो, चली गई क्या?
2: मुझको पुकार रही हो?
1: तुमको? तुम कौन हो?
2: मुझको नहीं पहचानती?
1: नहीं तो?
2: खूब खूब कहती हो आरती, इस घर की मालकिन को नहीं पहचानती?
1: घर की मालकिन? इस घर की मालकिन तो मैं हूं।
2: तुम्हारा वहम अभी दूर नहीं हुआ, तुम इस घर की मालकिन। मालकिन मैं हूं, मैं। तुम्हारा हक तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं इस घर में आई थी।
1: तुम हो कौन?
2: क्या तुमसे अपना तारुफ कराना होगा?
1: तुम साफ साफ कहते क्यों नहीं कि तुम कौन हो?
2: इतने साल हो गए मुझे इस घर में और अब मैं अपना तारुफ कराऊं? मेरी शादी हुई है राकेश से, इस घर में मैं मालकिन बनकर आई हूं।
1: ओह, तुम ही हो?
2: हाँ हाँ, मैं ही हूं। पहचाना तुमने?
1: लेकिन तुम तो मेरी राय से आई हो, मेरी इजाजत से आई हो इस घर में। मैं नहीं चाहती तो तुम इस घर में कभी नहीं आती।
2: वारी चाहने वाली, तुम्हारा गुरूर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं ये गुरूर खत्म करके रहूंगी।
1: मैं सच कहती हूँ, मेरे शौहर से पूछ लो, मेरी इजाजत से ही तुम्हारी शादी हुई है।
2: तुम्हारे शौहर से पूछ लो, कौन होता है वो तुम्हारा?
1: तुम इतना हंस क्यों रही हो? मुझसे क्या चाहती हो?
2: मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ।
1: चली जाऊँ? कहाँ चली जाऊँ?
2: कहीं भी चली जाओ, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस घर में मैं रहूंगी, मेरे शौहर रहेंगे, मेरे बच्चे रहेंगे। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से।
1: ये घर मेरा है, मैं यहाँ से जाऊंगी क्यों?
2: नहीं जाओगी?
1: नहीं।
2: तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारा कत्ल कर दूंगी मैं।
1: नहीं नहीं नहीं।
3: क्या बात है आरती?

0: हाँ मैं तो जाग गया, लेकिन तुम चिल्ला क्यों उठी?
1: सपना देख रही थी, डर गई।
0: अरे कैसा सपना देख रही थी?
1: डरावना था। एक औरत मेरा गला दबा रही थी।
0: देखो आरती, तुम इधर बहुत परेशान हो।
1: परेशान तो मैं आपको भी देख रही हूं। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं?
0: दूसरी शादी?
1: हाँ, मां जी कह रही थी।
0: मां जोर दे रही थी आरती, लेकिन मैंने नहीं चाहा। तुम चाहती हो?
1: आप चाहेंगे तो मैं मुखालफत नहीं करूंगी।
0: तुम्हें तो कहती हो घर सोना लगता है, अगर बाल बच्चे होते।
1: जिंदगी के सुख के लिए क्या बच्चों का होना जरूरी है? क्या हमारे सुख के लिए हमारा आपसे प्यार काफी नहीं है?
0: यही तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं आरती। मुझे तो हमेशा लगता रहा है कि प्यार के फूल से बंजर धरती भी मुस्कुरा उठती है।
1: सच कहते हैं आप
0: आरती,
1: प्यार के फूल से बंजर धरती भी मुस्कुरा उठती है। बंजर धरती भी मुस्कुरा उठती है।

अभी आप डॉक्टर सिद्धिनाथ कुमार का तहरीर करदा ये ड्रामा सुन रहे थे, बंजर धरती के फूल। पेशकश प्रेम वोहरा की थी, माविन थे सरफराज अहमद, हिस्सा लेने वाले फनकार थे शर्मिला मलकानी, अरुण कुमार, सपना सैनी, रईस मिर्जा, सरला नानगे और रश्मि देव। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम।

अगला नुमा समाप्त करते हैं दरार फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

आइए अगला नगमा समाप्त करते हैं उदित नारायण और जसविंदर नरोला की आवाज में। फिल्म है आ अब लौट चले।

0: आकाशवाणी कारगिल रीजनल न्यूज यूनिट स्पेशल प्रोग्राम्स, जिसमें हम आपके सामने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स उसके ऊपर बात करने के लिए ऑफिसर्स ऑफिशियल्स फेमस पर्सनलिटीज को हम बुला लेते हैं यहाँ पे, उनका राय आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका नजरिया आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जो इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 12 साल आज जो ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए, हम इस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन कंट्री में बैठ के हमारे इंडियंस को कैसा फील होता है, इंडिया में जो डेवलपमेंट्स आजकल देखने को मिलते हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फेमस यहाँ पे कारगिल में एनआरआईस फ्रॉम इंडिया जो दुबई में बेस्ड है, डॉक्टर आजम बदर खान, जिसे पॉपुलरली दुनिया में डॉक्टर नी के नाम से जाना जाता है। आजकल हमारे खुशकिस्मती है कि कारगिल में जो हर साल वो कैंप करते हैं उस कैंप के लिए आए हुए हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनका नज़रिया हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस मकसद से हमने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है, अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के डॉक्टर साहब आकाशवाणी कारगिल के स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, तो इसके लिए मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं सर, दूसरा उसके बाद मैं आपको वेलकम करता हूं सर आकाशवाणी कारगिल के स्टूडियो में। सर
1: बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनंत, मेरा ये प्रिविलेज है कि मुझे इस कारगिल के शहर में सरजमीन पे आने का हमेशा मौका मिलता है। हिंदुस्तान से बाहर जरूर है मगर हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, और जैसा आपने कहा कि यहाँ की जर्नी मेरी बहुत पुरानी है, 30 साल से ज्यादा हो गया जब पहली बार 1992 में इस कारगिल शहर से क्रॉस किया था। वो उस जमाने में हम जवान थे और मोटर बाइकिंग का बहुत शौक था, और तब से मुझे मैं इस आपके चौराहे पे हम लोगों ने लंच किया था, रहने का भी मौका मिला था। बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं कि हमें द्रास में एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से, तो कारगिल में आना मेरे लिए हर साल मैं वेट करता हूँ इस कैंप के लिए। कैंप एक बहाना है और बहुत अच्छा बहाना है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को के साथ मिल पाता हूँ, उनके साथ कुछ टाइम गुजार पाता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं उन लोगों को अपने खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है, जो कि मेरा एक प्रोफेशन है एज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन, विच इज मोर देन दैट, इट इज नी हेल्थ अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसा आपने कहा कि जिसके वजह से डॉक्टर नी के नाम से मैं पॉपुलरली जाना जाता हूं, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नी हेल्थ अवेयरनेस विच आई एम ट्राइंग टू प्रमोट।
0: सर आपने कहा कि यहाँ पे आना आपका हमेशा एक ड्रीम रहता है कि हाँ किस तरह में किसी न किसी तरीके से कारगिल पहुंच जाओ, ये इनिशिएटिव जो किस चीज से इंस्पायर हुआ, एक इंस्पिरेशन होगा सर, हर किसी चीज के लिए तो एक इंस्पिरेशन होता है, किस चीज से इंस्पायर हुआ है सर?
1: ये इंस्पिरेशन, हम इंसान हैं, हमारा इस दुनिया में एक छोटे वक्फे के लिए हम आए हैं, एक लिमिटेड टाइम है, ये ऊपर वाला ही जानता है कि हमें इस दुनिया में कब तक रहना है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं, हम सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं आए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को अपने सोसाइटी को दे सकें, और इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर मुझे अपने कंट्री से मैं बाहर रह रहा हूं और मुझे कंट्री में आकर के अपने हिंदुस्तान में सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है।
0: बिल्कुल सर, एज एन इंडियन प्रोफेशनल सर वर्किंग अबाउट, तो 12 साल जो गवर्नमेंट का है सर
1: जी,
0: आप एक डेवलप्ड कंट्री जो दुबई जिसे जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है, तो आप किस तरह देखते हो सर जो गवर्नमेंट के खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उसमें जो 12 साल गुजरा है उस चीज को आप किस तरह देखते?
1: ये विदाउट एनी हेजिटेशन आई वुड लाइक टू से कि 12 साल पिछले 12 साल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर में रहा है, इसमें डेवलपमेंट हुआ ही हुआ है और हो ही रहा है, और इस 12 साल में जितना डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ है इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। कितने सारे हमारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में एडवांसमेंट हुए हैं, रिसर्च के नाम पे काफी एडवांसमेंट हुआ है, हमारे सर्विसेज के इस पे हुआ है। मैं सिर्फ अपनी सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अवेयरनेस के नाम पे हम एक बड़ा इनिशिएटिव लें, स्पेशली एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ नी डॉक्टर एंड एज अ नी अवेयरनेस हेल्थ अवेयरनेस

0: एम्बिशन मेरे अभी एज अ प्रोफेशनल करियर में, मैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं दुबई में, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने ये रियलाइज किया है कि इस दुनिया में लोगों को हम बता सकें, अवेयर कर सकें कि घुटना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा स्लोगन है, टेक केयर ऑफ योर नी द वे यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। हार्ट गिव्स यू लाइफ, नी गिव्स यू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो नी की क्वालिटी ऑफ लाइफ से अटैचमेंट जो है वो अवेयरनेस से आएगा। जिस तरह से वर्ल्ड डायबिटीज डे है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, वर्ल्ड कैंसर डे है, जिस तरह से जी बिल्कुल, उस तरह से मेरा विजन है कि हम वर्ल्ड नी डे भी हिंदुस्तान के सरजमीन से हम दुनिया में शुरू करें,
1: दुनिया में सर,
0: दुनिया में ग्लोबल मूवमेंट एक बना सकें और ये चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि घुटना का प्रॉब्लम शुरुआत जब होता है तब से ही हमें उसके बारे में समझना है कि हम क्या, क्यों शुरुआत हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि शुरुआत में हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होने के बारे में हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं ज्यादा देर बैठ गया या उसकी वजह से हो गया, और वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा बेहतर फील करते हैं, तो आप वो माइंड में वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये आगे चल के 10 साल 15 साल के बाद खराब होता है, और जब इस लेवल पे आ जाता है कि बिल्कुल खराब हो गया है घुटना,
1: चेंज करना पड़ रहा है,
0: तो फिर नी रिप्लेसमेंट होने लगता है
1: और फाइनेंशियल बर्डन भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: जी, फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ इंसान के पॉकेट पे नहीं पड़ता है, ये इंश्योरेंस के ऊपर नहीं पड़ता है, ये गवर्नमेंट के बजट में भी आप देखें कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है एज इट इज काफी एक्सपेंसिव सर्जरी है, कुछ लाख लगते हैं एक घुटने को चेंज करने में, तो उतना लाख पैसा जो है वो हमारे उस पर खर्च हो रहा है। नो डाउट उससे आप रिकवर कर रहे हैं। आज के जमाने में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सर्जरी एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल सर्जरी, आपके पूरे क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर देता है, बट हम क्यों नहीं उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि हम उसको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, बट हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके बारे में अवेयरनेस रहेगा, समझ रहेगा कि क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या खान पान में क्या कमी है, क्या विटामिन डी की कमी से क्या इश्यू हो रहा है, कार्टिलेज कैसे घिस रहा है, डूज एंड डोंट्स क्या है, वो अवेयरनेस से आएगा। वो अवेयरनेस अगर होगा तो ही फिर हम उसको स्लो डाउन कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि पहले के जमाने में 55-60 साल से पहले कोई इंसान कहता होगा कि मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, और शुरुआत इसकी वैसे ही होती है कि हम कहना ये होगा कि हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो मुझे तकलीफ हो रही है, या गाड़ी चला रहे हैं, जैसे अभी आपके रेडियो स्टेशन पे ही आपके कलीग ने मुझसे पूछा कि 2 घंटे अगर मैं कंटिन्यूअसली बैठा रहता हूं और गाड़ी से उतरता हूं तो मुझे लंगड़ाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को समझ आना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, और यही सारी चीजों की समझ नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे करके वो यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, इट गोज इनटू वेयर एंड टेयर ऑफ द कार्टिलेज व्हिच वी कॉल्ड एजिंग, और उसको डिजेनरेशन बोले और उसको या अर्थराइटिस बोले। वो शुरुआत होती है अर्ली से, हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, वो मॉडरेट स्टेज पे जाता है, तब फिर हमें डॉक्टर कहते हैं कि आपको घुटने में आपका ग्रीसिंग कम गया है, सूख गया है एज के साथ, उसमें वो कीजिए। उसके बारे में भी उसको भी इंजेक्शन लेते हैं, छह महीने आराम फील होता है, 6 महीने आराम फील होता है, हमें लगता है हम रिकवर कर गए, रिकवर नहीं कर रहे हैं। वो डीजनरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी का इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है कि वो बिल्कुल लाजिम है कि हमें डिटोरिएट करते हैं, वो हमें एक्सटर्नल पे दिखता है। अगर अपने आप को ही देखें, 10 साल पहले मैं जैसा दिख रहा था
1: वो आज नहीं दिख रहा है
0: और अगले 10 साल में भी नहीं दिखेगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगले 10 साल में भी हम ऐसे नहीं रहेंगे जो आज दिख रहे हैं, बट हम अगले 10 साल में हम कैसे दिखेंगे ये हमारे हाथ में है। काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने डाइट से कर सकते हैं, अपने रेगुलर एक्सरसाइज से कर सकते हैं, इन चीजों से हम उसको अपने हाथ में रख सकते हैं। तो सेम चीज गोज कि हम एंटी एजिंग घुटने को कैसे एजिंग से हम स्लो डाउन कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ लास्ट में तो बर्डन पड़ता है, जेब पे बर्डन पड़ता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए, आप सुनते भी होंगे आप इन चीजों को, क्योंकि आप इसी फील्ड से, आयुष्मान भारत का आपने सुना होगा, और ऐसे जो इन जैसे स्कीम्स का सर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है पेशेंट्स के, खासकर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको इन स्कीम से कुछ बेनिफिट होते हुए दिखता है सर, क्योंकि आप ऐसे फार फ्लंग एरियाज में कैंप

0: करते हैं, फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, तो आज भी आपने कैंप किया है, तो इसमें कुछ इन स्कीम्स का बेनिफिट दिखता है सर?
1: इसमें तो कोई दूसरी जवाब ही नहीं है। आयुष्मान भारत की वजह से लाखों करोड़ लोग जो हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल,
1: उनको ये मौका मिल रहा है कि वो अपने इलाज पे खर्चा से बच पा रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज करवा
0: इलाज
1: पा रहे
0: करवा
1: हैं।
0: पा।
1: ये इस सरकार का सबसे बड़ा, एज अ डॉक्टर मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर पाऊंगा कि इस सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट
0: अचीवमेंट
1: है,
0: है
1: बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है,
0: आयुष्मान
1: जिसकी वजह
0: भारत।
1: से लोग को सेल्फ एक एम्पावरमेंट है। उनको ये फील होता है कि अगर मुझे कुछ आज के दिन में कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी होगी या कोई भी प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मैं इजली
0: इलाज
1: जा
0: कर
1: करके
0: पाऊंगा।
1: इलाज कर पाऊंगा। इसमें एक चीज सबसे बड़ी हुई है, जो पहले जो गरीब तबके के लोग थे उनको ये कभी सोच भी नहीं पाते थे कि मैं इलाज, अच्छा इलाज करा पाऊंगा। इलाज का प्रोविजन हमेशा रहता है कि आप छोटे से क्लिनिक में जाइए या एवरेज में जाइए या बहुत हाई क्लास में जाइए, मगर वो छोटे से ऊपर एवरेज में भी जाने का नहीं सोच पाते थे। ये आयुष्मान भारत की वजह से हुआ है कि उनको ये इंटरनल एम्पावरमेंट है, सोच
0: मेंटल
1: है,
0: सेटिस्फेक्शन भी होता है
1: सेटिस्फैक्शन
0: उनको।
1: है, कॉन्फिडेंस है, बैक ऑफ द माइंड में ये सोच है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इस बीमारी से अपाहिज नहीं होना पड़ेगा या मरना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप को इलाज के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकता हूं। तो
0: बिल्कुल
1: डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट।
0: सर, हम सुनते हैं सर, कल आपके जो लास्ट ईयर भी आप जो सर्जरी जहाँ पे करते हैं, तो ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग पे आप फोकस ज़्यादा करते हैं सर, लोकल डॉक्टर्स की जो ट्रांसफर, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और नो हाउ शेयरिंग का, इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट रहेगा सर, खासकर हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे बूम करने के लिए सर, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जो है वो एक हमेशा, कल डीसी साहब ने भी बताया सर कि कारगिल जैसे इलाके में एक बैकलॉग रहता है,
1: जी
0: एक्सपर्ट न होने की वजह से हमेशा ये बैकलॉग में रहते हैं, तो आप जैसे कैंप्स करते हैं तो इसमें वो पूरा हो जाते हैं। अब वो बैकलॉग जो रहने का सिस्टम था उसको कम करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं?
1: अनायत भाई, आप जानते हैं कि मैं इतने सालों से यहां पे आ रहा हूं। मैंने शुरुआत तो की कि मैं लोगों को यहां पे अपने सर्विसेज दे पाऊं, अपने कंट्री मैन को, और स्पेशली दूर दराज इलाके और डिफिकल्ट टेरेन, कारगिल जैसे जगह पे, लद्दाख के रीजन में, जहां मैंने बाइकिंग स्टार्ट की, मुझे इस जगह से मोहब्बत हुई एडवेंचर के नाम पे, लेके इनकी आपकी जो खूबसूरत आबोहवा है, एनवायरनमेंट है, बट उसके साथ जब ये मौका मिला मुझे कि मैं यहां पे आकर के लोगों को ऑपरेट कर सकूं, उनके प्रॉब्लम्स को, जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो श्रीनगर या दिल्ली जाने की नहीं कर पा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: उस प्रोसेस में मुझे ये समझ में आया कुछ साल के बाद कि यहां पे के जो डॉक्टर्स हैं आपके, दे आर ऑल ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड, वेरी एडिक्वेटली ट्रेन्ड, हाई क्लास ट्रेन्ड हैं, बिकॉज चाहे तो श्रीनगर से या दिल्ली से, जम्मू से,
0: बिल्कुल
1: तो उनके पास नो हाउ, नॉलेज सब कुछ है। अभी तो मैं देख रहा हूं कि आपके जो नया हॉस्पिटल है, दैट इज ऑल्सो हाई क्लास, एवरी फैसिलिटी इज
0: वेल
1: अवेलेबल
0: इक्विप्ड
1: देयर,
0: है।
1: वेल इक्विप्ड
0: बिल्कुल
1: है। बट एक चीज की जो मुझे कमी दिखी, वो दिखी कि डॉक्टर्स स्पेशली इस तरह के मेजर सर्जरी या हाई एंड स्टैंडर्ड की सर्जरीज को करने से हिचकिचाते हैं। हिचकिचाने का भी एक रीजन है क्योंकि उनको इस चीज की ट्रेनिंग भले है वहां पे, बट यहां पे इनिशिएट करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि रेगुलर सिस्टम में वो नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं जब आकर के इन पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूं, उसके बीच में मुझे मौका मिलता है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, चाहे जो सीनियर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, या जो मेरे कलीग्स हैं,
0: जी
1: या जो
0: बिल्कुल
1: जूनियर्स हैं, उनको मैं अपने नॉलेज शेयर कर पाऊं क्लिनिकली। थ्योरेटिकली दे आर
0: प्रैक्टिकल
1: वेरी वेरी साउंड,
0: बिल्कुल
1: क्लिनिकली मतलब प्रैक्टिकली। तो जब मैं उनसे, देखिए एक चीज आप भी जानते हैं कि यहाँ पे कैंप के लिए लोग आते हैं बाहर से, बट कैंप में आकर के ऑपरेट करके चले जाना ही मकसद मेरा नहीं है। मेरा मकसद हमेशा रहा है कि मैं यहाँ के डॉक्टर्स को सिखा पाऊं और वो सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना नॉलेज गेन सके, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि वो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सर्जरी कर सके। प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट, सर्जरी की कॉल स्टैंडर्ड, वो सारी चीजें मैं गिव
0: एक्सचेंज कर सके।
1: एक्सचेंज
0: बिल्कुल,
1: कर सके और कर रहे हैं।
0: और कितना
1: मुझे
0: सेटिस्फेक्शन
1: मुझे इस बार ये फक्र के साथ मैं कह सकता

0: I'm really glad to say that हमने काफी सारी नी रिप्लेसमेंट्स की हैं पिछले दो दिन में 25 के आसपास सर्जरी करने और सारी की सारी सर्जरीज मैंने अपने कलीग से यहाँ पे जो है उनसे करवाई है. ये कोशिश मेरी पिछले 2-3 साल से चल रही है और इस साल मुझे ये सेटिस्फैक्शन ये खुशी है आज खत्म करने के बाद कि उन लोगों ने खुद से A to Z नी रिप्लेसमेंट मेरे सुपरविजन में किया है और कॉन्फिडेंटली किया है और वो आगे इस चीज को लेकर
1: आपके बगैर भी कर सकते हैं इसका मतलब.
0: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं.
1: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करके नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक के उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम दे कैन डू नी रिप्लेसमेंट कॉन्फिडेंटली. तो हमें पब्लिक को भी कहना चाहूंगा हमारे कि आप प्लीज अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें वो और उनसे आप सर्जरी कराएं. हमारे जैसे लोगों की वेट करने की आपको जरूरत नहीं है. वो आपको
1: या इतना ज्यादा खर्चा करके दिल्ली जाने की जरूरत नहीं.
0: एग्जैक्टली. वो भी बहुत बड़ी बात है कि खर्चा करके आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि आप बाहर जाकर के खर्चा कराएं. यहां पे आप करें वो लोग आपको सबसे अच्छा इलाज देंगे.
1: बिल्कुल सर. डॉक्टर साहब आखिर में सर हमारा इस प्रोग्राम का एक मकसद है सर. हम अभी गवर्नमेंट के जो 12 साल के अचीवमेंट्स के ऊपर हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं सर. तो एक एज एन इंडियन आप बाहर अपना सेटल्ड है एज एन NRI तो फेलो इंडियंस जो बाहर आपकी तरह काम करते हैं या अपना जो जीवन बसर कर रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे सर नेशन बिल्डिंग के लिए और जो कम्युनिटीज हमारे जो कारगिल इंडिया की जो हमारे जो फॉरफ्लंग एरिया जैसे कारगिल है उनको सर्व करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे सर और कैसे उनको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे.
0: मैं अपने सारे इंडियन डायस्पोरा जो NRIs हम कहते हैं जो बाहर है स्पेशली डॉक्टर
1: प्रवासी
0: भारतीय और स्पेशली मैं डॉक्टर्स की बात करूंगा. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत करें. सोच हम सब में है मगर सोच के साथ हम थोड़ा सा सिंस हमारा कनेक्शन थोड़ा दूर हो जाता है तो हमें वो हिम्मत नहीं आता है कि हम कैसे करें. मैं अवेलेबल हूं. मैं अपने सारे डायस्पोरा थ्रू आउट द वर्ल्ड मैं ये कहना चाहूंगा इंडियन कम्युनिटी से कि अगर जो भी डॉक्टर्स चाहते हैं कि अपने देश को हम सर्व कर सकें अपने मेडिकल फील्ड में प्लीज कम ज्वाइन हैंड विथ मी. माई एसोसिएशन इज कॉल्ड लेट्स वॉक अगेन विथ डॉक्टर नी एंड हम डेफिनेटली ऐसे दूर दरार इलाके में पहाड़ी इलाके में डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम सब मिल करके अपने देश को सर्व करेंगे.
1: डॉक्टर साहब आपने अपने कीमती वक्त में सर क्योंकि आप हमें पता है 3 दिन का आपका यहाँ का टूर था तो इस टाइम वक्त में से आपने टाइम निकाल के हमारे ऑडियंस से हमारे सुनने वाले देखने वालों से मुखातिब होने का आपने डिसीजन लिया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर. आकाशवाणी कारगिल खासकर रीजनल न्यूज यूनिट की तरफ से उम्मीद करते हैं सर कि फर्दर आगे भी आप यहाँ पे आके ऐसे जगहों में जाके लोगों का हमारे कम्युनिटी का उदाहरण सर्विस दे सके अपना उसके लिए अल्लाह ताला आपको तौफीक दे. बहुत बहुत शुक्रिया सर.
0: मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कारगिल में हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब राकेश कुमार जी से मुलाकात हुई और ही वॉज वेरी फोर्थकमिंग वेरी पॉजिटिव पर्सन. ही लाइक दिस इनिशिएटिव एंड ही रियली लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड स्पेशली ट्रेनिंग द डॉक्टर्स. और मैं साथ साथ अल रिजा रिसर्च एंड हेल्थ फाउंडेशन जो हेल्थ विंग है आपके जमात उलमा का उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और यहां पे आकर के सर्व करने का. मैं सारे यहां के जितने एसोसिएशंस हैं अल बकरिया है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट है इन सब का मैं बहुत आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू देम दैट दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन कम टू दिस पार्ट ऑफ द इंडिया एंड एज अ इंडियन टू सर्व हियर एंड गिव माई सर्विसेज. इट बी माई एंडेवर फॉर ऑलवेज.
1: थैंक यू सर. इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका इख्तिताम पहुंचा है. मैं एक बार फिर आप लोगों से ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी कारगिल बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर अथॉरिटीज को बुला के आप लोगों तक गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर हम

बात करते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम और एक एक्सपर्ट को बुला के आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।

कि लोग शराफत ही के साथ पैदा किए गए हैं। क्या इंसान पैदाइशी तौर पर गोश्त, चर्बी और आसाब के सिवा कुछ और अनासिर से बने हैं? फख्र तो सिर्फ ना सिर्फ अक्ल सलीम, हया, इफ्फत, परहेजगारी और अदब का नाम है। अगर आप एक दूसरे पर सिबकत लेना, एक दूसरे पर फोकियत तराशी करना, एक दूसरे पर रिश्क लेना चाहते हैं, तो रिश्क और मैदान की मुसाबिकत की मैदान सही और जायज मुसाबिकती मैदान तो नेक आमाल, अखलाक हसना और खुलूसियत की रूप में आपके सामने मौजूद है। और इरशाद बारी ताला है, फस्तबिकुल खैरात, नेक आमाल के मैदान में मुसाबिकत ले लो। तो हम एक ही मुल्क के शहरी हैं और किसी कौम को दूसरे कौम पर कोई फोकियत गर्दाने की जरूरत नहीं है और न किसी को एहसास कमतरी की एहसास की जरूरत है, बल्कि सब भाई भाई हैं। हम सब इसी महबूब मुल्क के शहरी हैं, सपने इसी मुल्क की दाना पानी पर जिंदगी गुजारे हैं। एक ही जिस्म के आजा व जवारे हैं, कोई सर है तो कोई पैर, कोई बाजू तो कोई दिल, कोई आंख तो दूसरा दिमाग का काम अंजाम देता है। और इस जिस्म को कमजोर और खोखला बनाने के लिए जहरीली जरासीम का काम तअस्सुब, मुनाफिरत, फिरका परस्ती और मुनाफिकत जरासीम में मोहलिक का काम अंजाम देता है और इस जिस्म को रोज बरोज कमजोर और लागर बना देता है। इन्हीं से इत्तेहाद का इजाला हो सकता है और तअस्सुब ही मुनाज़ात, इख्तिलाफात और तफर्रुका का सरचश्मा है। लिहाजा मुल्क की सलामती और बका को अपना नस्बुल ऐन बनाकर हम मुत्तहिद रहें।

0: मेजर लिखवा चेस्ट कंप्रेशन जरे यानी कि 60 पर मिनट ये सब का मिनट ची अनुक 60 रेट ये सब का लगभग इसका ना दू टेक्निकल गता ची शीन वीडियो के अंत आता चीन या आते ची ची का सब रोशीन या फर्स्ट एटिकर मसलन क्लासिक या मलसम हम वह ट्रेनिंग तमाम दे ट्रेनिंग होने पुलिस पर तमाम मेडिकल पर तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट पर तमाम छह ना दी लगभग इसका लगभग चिक पेचिक पर सेक्स ना नतेज दो खोए ब्रंग पे करना ने खोए हार्ट पो पम्प बे एट द रेट ऑफ यानी कि 1/3 ची खोए चेस्ट यानी कि खोए सिमोन नंगोज अच्छा रोशीन दी लग पाए इसका ना पंप तां से सट फेरा एक मिनट या छः सप्पू खुआ पंप बारोशिन और दो बार गते खुआ रेस्पिरेशन तामे कोशिश बारोशिन अगर कतु कोज हिस फीन में ना तो हिस फीन में चस पुला रेस्पिरेशन पुगा तो तां चिंज ना बेहतरीन इन खुएज नला शकोकमा या टुटियां या खैं जंग गख से खाख सों से सा सों से दो सों से या कसु सो तक सों चिंदे सोन बुत सों से मिंदुल तसे दोंस ना साब बसर गप्पे का एम्बू बैक हो चिंदे एम्बू बैक पने वो मासक तक से हवा तो मोशन तो दो का तो मैं मन डिस्परेट कंडीशन चाह मुश्किल हालत चानुक जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जरें नतेस मन चंग मिथो भी जगह चानुक खनंग नतेस हवा तो मैं चिन और ध्यान रखवा का तो जरूरी देखा थे लड़को शायद तो दोनों का तो खोज एकदम से कोई पल्स पर रेस्टोर सों से या खो गूल खो स्पेरा तं से या खो हिस फिंग का तुम अभी ना ऑक्सीजन तं से वो मे की जरिए का ऑक्सीजन कंग खुआ ऑक्सीजन पर कनेक्ट बसे युद्ध का फैसिलिटी युद्ध का ऑक्सीजन कनेक्ट बसे एम्बो बैग ने एम्बो रेस्परेशन आर्टिफिशियल रेस्परेशन जरचिन यू स्टार्ट बा मना जरूरी छाना दी ए से एयरवे बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन सर्कुलेशन चेक पुंगाते सा फर नोमिंदुक देखना पता छचिन मेनली ज्यादातर पो हिस पिंग चौता खुए छाती गुले नोमिंदुक या खुए स्नमचो लिशन पर शीशे गते आईनिक जगनाते का लंसपा चिन या खुआ स्कत बिंग मचो चिन नता छाना दुख का रेस्परेशन रूल नोमिंदुक दो का पता छचिन शुक्रिया
1: दसन चापाएं थे रेलुक्सिया गोरिंग ने पिन मीडिया में का द्वाकाशवाणी कर गिलिन कसाता प्रोग्राम में मदद फूनी फिया प्रोग्राम फुचिकन पे तैबाबानो प्रोग्राम प्रोड्यूसर पे गुलजार हुसैन

0: इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है.
1: The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for the exceptional performance throughout the tournament. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla. Today, put into bat, India posted 377 runs for the loss of 9 wickets and stipulated 50 overs. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And with that, we end this news bulletin.
2: दासन सखपयंते आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी ना अंग्रेजी न खबर सुना भी निपिन मीडिया में का दि आकाशवाणी करगिल
3: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
4: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
5: दादू रुको लिंक में क्लिक मत करना
4: क्यों
5: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
4: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले तेरी समझदारी का फल
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
7: नई कार जीतने का मौका वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है
8: रुक जा बुड्ढू
7: क्या
9: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो स्कैमर्स जाती तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं
8: ओ तो समझ गई ना रिलैक्स
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कर पाते
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो
7: कूल रहो
10: Jangi business un laske tangmifia lenchik akashwani roks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
11: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
12: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
11: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
12: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
11: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
12: 8700014242 सुनो ना
11: हाँ
12: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ
11: तो रोका किसने है हाँ
12: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं
11: मुझसे
12: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर
11: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है
12: पर उससे मेरा क्या फायदा
11: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ
12: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं
11: बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 8700014242
12: ओ 8700014242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर
13: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम

0: ग्रेस पुरा चिक्ची मना माछा सिंग मोल छ जमा तिमी मस न दिबी मिसकन्सेप्शन फॉर मिलुस परगोस कि दिर योगा जबना गतिस छोसपा चिक्ची नम दे थुदि ता तंदे चोशिमेन दुरुंगाती कदीम जमाने नु नगाती गेस्टेड भारत दुले नेट पे खोरन क्रिम शिन जुगाओ दक्षम मते दुनिया गा तांस तं हजमाती तरफ ना हिंदुस्तानी तरफ ना दुरु दक्षम दुनिया गा नु इंटरनेशनल योगा डे जरे दिन जगह सिय छतां जु छने रेस मना लेकिन तन तन मुजु दक्षम मती प्रोबेस बिज ना या छरमान ना दक्षम कुला कुला कोन दक्षम सोंस सु दिदि फंतोस स्कोरला छने जेरे दु चाम छ छ सम था जु दक्षम मती ना उने अनु छुनचे फ्रुसा तं हजु दा ना खुस स्कूल चेन हो दिया चुक छाबिंग से हो दिया ना ती अतामा निकटाम शिक्षण तो कि ना ती डेली रूटीन पे आनो है जो योगा ना ती प्रशून निकाना दक्षम ने गोजुक बना का तो कौन देश न्यूक्स बचाने कुल्ला कुल्ला ना बेटांग देश को लायरी समझो चिमोल ना
1: ना तेस दक्षण ना तंग सगा पता हो जो ना ती डेली लाइफ पका तो शिसों से उतरे मना कोने में पड़े रहते फोन जिखुरे प्रोनी नंग आतामा नी नंग दे फिला अंतेस मतलब शंग और शूर उठ खाने आतामा का तो निस ना प्रोन मो तुगना क्षेत्र मतलब वहाँ तो थोम अच्छा जो कि कौन सुनते सुनते प्रोन मो तुगना क्षेत्र कौन डूल बायों मार दिया फिर गार्डन का तो नहीं लेफ्ट से हो मार स्पंग का तो नहीं का सॉन्ग से हो मार दिया चुजुर का तो ना सॉन्ग से हो मार लेकिन अति ज्यादातर आतामा लादू पता हूँ मामिंदु की प्रोनी फिला चम चे खचा नींद रे जा जब ना प्रोनी मतलब अति ग्रोथ ही टाइम मोबाइल का ले जाना का तो ना खो दत पाओ मतलब स्मिन बाबा से खिमो थो अच्छा चीन जो दे फिर एक्सरसाइज रिक बचू इन खो मैं ज्यादा टफ एक्सरसाइज मा बचू ना खो ज्यादा घंटा एक घंटा आधा घंटा खो एक्सरसाइज मा बचू ना कम से कम 15 मिनट खो खो ना वो दुख से खो ना वो यंग स्पेक चुख शिवा से योगा खुरा बना उदय अलग अलग टाइप यूंगा जो फ्रू संग नंबर का योगा बचिन छिमी संग नंबर का योगा बचिन जरे फ्रू नंबर खुनतेज ओदोन सबरिक बसे ओदोन तारिक बसे कि खो नंबर का चुका योगा बचिन सुख खो नंबर का चुका एक्सरसाइज बचने टाइम स्पेंड बचिन सुख जरे ओदोन गातेज अगर का तुम आती आता आतामा निसाब से ngati phrun la ka to zer na ka to ngati phruni phia ngati phruni mental development phia ma ngati phruni growth phia mana khak chan cha chin ju
0: bakshi ju yes mana tan tan mul chan adi ka ngati zo asna jak po sha du pa ha ju ni ki yoga be zer na sa ga filang chok chon cha men su pa ju chal ma chin cha ra gon chin ya bo mi khok pang ni me na ko fla so se yon cha song ya am normal age run la khong yoga ri ma chok ha ju
1: o chok la ngati yoga ya nok sa ga sa ga fila same yoga ka bi mana me yong mat yoga इंस्ट्रक्टर सु इन्ना या फिर सु अलग चिक इन्ना का तो या फिर एक्सरसाइज बचू खन चिक का तो इन्ना का तो खास पहला एरेस ज्वाइन बाबत ज्वाइन चौक बस पे जगह खुआ टीचिंग की एरांग तो से जर्मे को चले एरां आर्थराइटिस होता एरां प्रेग्नेंट होता या फिर एरां सर्जरी बस पे ना रिसेंटली सर्जरी बस पे ना या फिर एरां फ्रू इना एरां छिमी इना और तो खुला टीचिंग देना खो अलग अलग कैटेगरी चो चिंजो दू अलग कैटेगरी आर्थराइटिस पन अलग कैटेगरी प्रेगनेंसी पन अलग कैटेगरी फ्रून अलग कैटेगरी छिमिन अलग कैटेगरी और तो कैटेगरी कैटेगरी जो से ना योगे अनु टाइप टाइप मंगमो यो जो मतलब गती जब 82 दक्षिण गते करेंटली बखानी योगा यो जुगा इंटरनेशनली बात लेकिन 82 बच से ज्यादा 1000 बच से किमो दक्षिण यंग योगा बिंस यो का 83 गतांग रजिस्टर्ड होत पाया जो हम कर सकते हैं ओदो बच किमो दच योगे देन अ पार्ट होत पना ता संबत जो ता चम चेक देन यो तीन वास्ट यो तीन जुसरे योगे देनाओ ओ दे दना चोसला गतांग प्रोकुरी फिला अलग प्रेगनेंसी फिला खुरी अलग दोना गति आर्थराइटिस जो खनसा खोरंग अलग स्कियांग स्कुम किमो बामियान खनसा खोरंग अलग योगा यो जु ओ चोगा अलग अलग बसे बचिन जु सगा चोस कभी बचामेन
0: बक्से जु अनचन जु दिरिंग नता इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन मैनेजम से हजु दिरिंग जागा ना गता थोंग मचा था जु लोकसो डिपार्टमेंट उन इन ना या मना गरम से गता दिसो गवर्नमेंट दि सर्कुलर जि योंग से उत्पन्न मे बखमे सों से इन ना या रंग से शुरू कै न दिरिंग जागा ना योगा दिक बा थोंग बट गति दु समय जक पोशद कि दिरिंग योगा जक चिक चिक से फिलामेन हज दिन से फिलामेन बल्कि दिन मते जगजर मिथानो मतेस प्रैक्टिस वे कॉल भी चीसी इंजरे थने जु दे सो बेसिक योगा चिक चिक हज ता या हिस लेन मी एक्सरसाइज यरस मते प्रोग्राम गन खनन लाचे मोल ला के गाव की खोस गारन दुख से गा तुशी का इन नंद तो से बांगन से जोतम गाउस कॉम्प्लीट नॉर्मल या स्ट्रेस फ्री छो या ब्लिक खुंता हाला नल योजना छते ना यहां स्मृति छता ओते जो योगा चिक चिक या आसनास या प्राणायाम गा मोल ला
1: During International Day of Yoga in Manakato, during 2026, the theme project is Yoga for Healthy Aging. Yoga for Healthy Aging is a very good thing. Chimina chachin khud ba khud. Chaya ngatang ergyala

0: Day time pe chang ta yoga na yam bo chak pe thar ni la jang na du sin ma ga day ta time pe chho te tin pana nga te yoga re bana ka to do na nga ta sakat lo nga te zurmo yong khane de abdomen nga te ta ja ta zurmo yong de ha ju de ta ja de zurmo ngon chak nga ta tu du cha chin su pa ju ka ta
1: ona do na nga ti stress che ta ju nga ta tension che de re wa hon zurmo zur chen odonika yogi chi asa chik cha chin ode zurme ka
0: जैसे कि आता स्ट्रेस मंगबो टेंशन मंगबो छ देखा जो टेंशन मंगबो यों खान मुला योगा मन सबसे फायदेमंद है जिया जैसे कि आता जे सुशा हसन जे चोन चन मंदु का सन जे चोन चन अच्छा पद्मा आसन जे खानो चन जो हा जो विज्रा आसन जे खानो चन अच्छा भुजंग आसन जे खानो चन ओ दे योगा उन के न आता स्ट्रेस फ्री छ चन जिया जैसे कि प्राणायाम आयो चन प्राणायाम लाई आसन जे नी जों चन जो हा जो प्राणायाम यों चन जो क्या शीतकाली जरे अच्छा अभस्तकारी जरे योचिन अलोम विलोम जिनची योचिन और योगा उनका तो रास्ते संगता बाश न का तो यानी कि बाना योगा होगा तो बात है ना मतलब ठीक इन स्ट्रक्चर से यानी कि ठीक बात को योगा बाश कंच नहीं है वो योगा वाचो के ना गाता लाभ ये पाछो का सा
1: मार्शिस नाती खासकर खोपनी रे मेट खानी अचिन मोला योगी का ना गसु फन के रि थपचिन
0: जैसे कि मता योगा जरे मते फन के मतलब यो तंग तंग मन मांगबो तिन सुजिया मगर खोपा हिदिन यो जन खतिन मुन ला मतलब चिंते चीज मुन तक पुरे दो तो पे योगा खेलना काफी हल्का रे एक्सरसाइज जो जा जैसे कि मता दुबा से मता जुबि चक से दुगो दे हाजो जुबि चक से मता दु चो जुबि चक से दुख सना यानी कि हल्का मता मता हल्का हल्का सांस लेंचा अच्छा खेरे ना गतंग मतलब पिछारी गोतंग हसिया योगा जिन चोन चिन जो आजो हसिया योगा जिन चोन चिन हसिया योगा ओके ना गतंग ज्यादा यूज बचा अच्छा देखा ना योन चिन जिया विजरा हसन से खान चियों चिन ओ दोन संगमा का तो गसिल हल्का हल्का एक बाना का तो यानी कि फू ना के ना अर्गमो चंचिक ना स्किपो चंचिक लुशन जो आमा खेर ना स्किपो चन अर्गमो चंचिक लुशन जो का सा
1: बख्शी जो अगर कतो दरिंग अति अचिनमो चीज हा योगा बेग समना गा लसना ला योगी बारे तख्सम एत खान चीज चुक दिरिंग नंगास योगा शुरू बोक समना कतो खुस गचुक जोस्ता ची का चम तिक बार गोशिन खुई रूटीन पु गचुक शिंग मर गोशिन दचुक शिका खुई गचुक खुस जोस्ता ची का योगा बार गोशिन दिस को ला ची मोलचा
0: सबसे पहला नंगा तंग हाज योगा बा ना जिबाना तुजो खटा खवा योगा बा नियंत्रण चुजिया गचर मना मते पोशर मते बो जुक्सपो केन रुस्पोन जुक न जो जुक्सिन दायु अना त्या गाता खास कर गाता टीचर से सुक्षी गया गाता जरखन चिका जो खा दुतु बात बो जे कना कुल्या दुतु बो अतु बो जरे गाता स्क्वा कुल्या स्टाप पर गोशिन गया स्टाप से ना देखना कुले कुले स्टाप चाचिन बा शुरुआत तो करा गाता पद्मा आसन गाता जुर्बी चाप दुगु दायु जुर्बी चाप दुक्षा से कना गाता स्टाप बनां केना गाता ठीकिन बा जो कसम बाशी जो चनंग
1: अति खासकर अचिन मोला जगी नतेस योगा बॉक्स समना तम चिक नतेस टाइम चिक नतेस तंगमर गोशिन योगी फिला और गा वक्त पिका या गा मोतु नतो फितो गा टाइम पिका नतेस योगा बार गोशिन और तम चिक बार गोशिन
0: जिसे की रात नमो उन्ला गतो गते नते योगा बार गो सुक कतो समना माना माना टाइम मेट खान उन्ला 20 मिनट कोना या 15 मिनट कोना गते गते योगा कतो बाना कतो ठीक दे खासकर मोतु का लांग सेना गते फ्याक वक बा सेना छुस्को मन सबसे जरूरी चीज है योगा बाखन वाला हा यो छुस्को तू मन गाती भी टोपा खेना खाली छजन चीज है दोस्त तोमा छजन तो हा ने ने यो पे गंदगी उन गामा साफ सुन सना लेकिन योगा बाना का तो मोत मोत क्लास से योगा बचा या वाकिंग बचा ओ दोन खेना छिन मोन पे सबसे जरूरी चीज है देखा ना खेना योगा उस खेलना का तो मता अप्रूव बस भी से शास्त्र जो मता ऑफिस बचा चा जो खांबे लास हर कसम लास जो अमांग ला तम शी मतलब डिप्रेशन उन टेंशन स्टाइल ऑन द आजो और द योगा वाला का तो मता निमो शॉट के ना गति यानी कि माइंड पो सॉल्यूशन तो यानी कि मता स्किपो ने एम सॉल्यूशन तो पजो का सा मो तो को बना ठीक इन तो जो का सा
1: बख्शिस गुरसन खा गति अचन मोल खास कर गति थगरीन गांव में मल से खाने अचन मोल ला से केति लाश गुंग ए दिया ना लाश गुंग ए डोमेन मंगते अचन मोल ला मना ना लाश यान खा खों मना मशगुल लुसित खों कुंती फिल टाइम चिक छामे था जो छना दी टाइम पे आनो ना टाइम चिक पेंसिल दमो बस खुरी फिल टाइम चिक पेंसिल योगिक बाना खा जशिक हिंस मोर यान चाचा दुखा जो छना गता दिका रेडी कहा गाता गचुक्षी का बाद बीत रिस्तान माना मांगिन हा
0: मायम
1: छना
0: पंचा कशन
1: गति अछनुमो लाची खंगमा दुखसे दुनो ख्वायंग योगी एक्सपर्ट चिक्यों से हर अछनुमा खुद दुन पुला ख्वा योगा बांग मांगिन हा जो

0: नंग या दफ्तर या हटी कजुक से नंग बांगन चाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट

0: सुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में

0: स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा

नेशंस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topper. Today's win also marked their return to the Pro League next season. Lalram Siami was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for their exceptional performance throughout the tournament. Hockey India has announced a cash award of 3 lakh rupees for each player and 1.5 lakh rupees for each member of the support staff. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for Captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed, over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरियापलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी है, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख का फैसला कुन उनसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने

0: प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा. इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला.
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है. आज INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं. ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं.
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया. इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की. अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया. NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे. मजीद तफसील हमारे नामा निगार से.
2: इम्तिहानात के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से 2 सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए. CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे. इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमे डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया. मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए. इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी. आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद.
0: CBSE ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं. आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीज का ऐलान कर दिया. बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीज भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराये और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें. तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए. इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं. आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की. वजीर आला श्री जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है. नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की. योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया. इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई. वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शौरका के साथ योग किया. इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है.
1: योग केवल हमारे

0: स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: इस साल के योग के बैनुल अक्वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा 4 फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। 4 फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने FIH खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की

प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनेलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दम्बोला में तीन मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारत ए ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और

होगा थास मिथुलन रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने दो दो विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाथ लाबेम शहर में मुनक़िदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का एक तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनघास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक़िद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद उबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालय खत्े में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।